0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट कांट रोड मुरादाबाद।
6: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
7: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
6: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
7: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
3: सुप्रभात, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ हैं आप और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे FM मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
3: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
4: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और

0: के साथ करना चाहिए?
1: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
1: टाइम तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं। बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
0: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
0: ठीक है,
1: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
1: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है
0: प्लीज
1: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
0: वायु मुद्रा,
1: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
0: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
1: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
0: ओके,
1: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
0: जी,
1: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
0: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
1: मेडिटेशन तो है ही भाई आपको स्ट्रेस से दूर करने
0: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं स्थिरता के साथ।
1: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
0: ओके,
1: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
0: ओके,
1: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
0: क्या बात,
1: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
0: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
0: अरे वाह,
1: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
0: क्या बात है,
1: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते।
0: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट इजी, है ना?
1: yes,
0: हर
1: yes.
0: किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है। आज yes, आपको yes. इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
1: देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
0: अरे वाह, क्या नाम है सर?
1: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक है वो।
0: अरे वाह,
1: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
0: Lovely.
1: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
0: नवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
1: सुबह तो योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं।
0: बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
1: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स

0: अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
0: हाँ जी,
1: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, थैंक यू गाइस, मुरादाबाद 89.6।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए। विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैंसी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया ईएफटीए एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
4: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
3: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
4: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Green energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
3: द समिट वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई सीईओज ऑफ ओवर 50 कंपनीज एंड मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द नॉर्वेजियन एंड इंडियन बिजनेस एंड रिसर्च कम्युनिटीज। Early in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, as both the countries are leading maritime nations.
5: Recognizing the ambitious
6: सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, आप कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ हैं आप, और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी। स्टूडियो में मौजूद है, हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफ एम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
7: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
6: हाँ वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा

0: एक्सेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली।
0: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनपे कभी अवेयर नहीं होते, उनपे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
0: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
0: टाइम तो होना ही चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
1: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
0: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
1: ठीक है,
0: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है, हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
0: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है
1: प्लीज
0: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
1: वायु मुद्रा,
0: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
1: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
0: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
1: ओके।
0: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
1: जी,
0: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
1: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
0: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
1: के कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
0: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
1: ओके,
0: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
1: ओके,
0: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं।
1: क्या बात,
0: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
1: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
1: अरे वाह,
0: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
1: क्या बात है,
0: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते।
1: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना, इट्स नॉट इजी, है ना?
0: Yes,
1: हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
0: देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
1: अरे वाह, क्या नाम है?
0: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
1: अरे वाह, क्या बात है,
0: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
1: अरे वाह,
0: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा, उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके

0: आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया.
1: Lovely.
0: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया.
1: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है.
0: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए. तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा. हाँ, तो वो मेरा मतलब
1: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं. बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे. तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो. बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं?
0: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.
1: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली. फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम.
0: हाँ जी,
1: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग. थैंक यू गाइस, मुरादाबाद 89.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये पूरे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
4: अच्छे हैं
3: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसे लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
4: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
3: जी
4: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
3: रेडियो के माध्यम से
4: पहुँचा सकते हैं, जो की शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
3: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
4: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
3: जी,
4: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसटीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्य योजना बना के उस पर काम करते हैं।
3: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं इसी में, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
4: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
3: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना एकदम से, ये आपदा ही होती है सर। तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
4: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
3: जी,
4: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती हैं। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर्स फेज बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है,
3: 100%,
4: लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है। उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना, जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हम हैं यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है। शॉर्ट सर्किट से जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई। तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर है उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही। बिल्कुल। तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
3: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
4: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
3: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
4: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं, तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहाँ पे ना रखें। क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
4: जी।
3: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूँ वही जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
4: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
3: करेक्ट।
4: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर लें एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारें, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, आप पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
3: बहुत बढ़िया। अच्छा सर जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
4: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
3: जी
4: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
4: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें हैं उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो ये आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं?
4: देखिए, मैंने जागरूकता के स्तर पे तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पे अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। तो पानी के पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर, ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ सेंटर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी शेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला, बहुत बड़ा चौराहा, हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई शेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है, तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5,400 रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए,
3: बिल्कुल,
4: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
3: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो इसके में आपका क्या कहना है?
4: देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है,
3: बिल्कुल,
4: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो, और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें, फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें, सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और, ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
3: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
4: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो 2-3 चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए, और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉक ड्रिल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं, और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए, और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और और करना चाहूंगा जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है,
3: करेक्ट।
4: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
3: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और सबसे अच्छी बात आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश
4: देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील हैं, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
3: थैंक यू सर, आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।
0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों

0: आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

वेलकम बैक है जी, सुप्रभात, नमस्कार। हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां पर बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, मंगलवार का। सबसे पहले तो जय श्री राम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। मंगलवार का दिन है, प्रभु का नाम लेकर करते हैं आज के सफर की शुरुआत। आज की जो हमारी ये गाड़ी है, इसको हम और ज्यादा इंटरटेनिंग बनाने वाले हैं। इंटरटेनमेंट की ट्रेन है, हमारा स्टेशन जो है वो इंटरटेनमेंट का है, जहां पर आपको ढेर सारी जानकारियों से रूबरू कराया जाता है और बहुत सारा गीत संगीत आपके लिए लेकर आया जाता है हर सुबह। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तारीख है 19 मई की आज। तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूं आपके रेडियो सेट पर। जी, आपके छोटे से रेडियो पे डेली आता हूं मंडे टू सैटरडे। आज दिन है मंगलवार का, यानी कि हफ्ते का दूसरा दिन। 19 मई की सुबह सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं बहुत तेज लालिमा के साथ। अगर आप अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी सावधानियों का आपने ख्याल रखना है। बाकी आज का दिन बहुत खूबसूरत है, आज के सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही ब्यूटीफुल विचार। श्रोताओं, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर कोई भी इंसान अपने मन में ये ठान ले, ये वो अगर अपने मन को ये चीज बता दे कि उसने जो सोचा है वो उसे करके दिखाना है, और अगर उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे सफलता को हासिल करना ही करना है, मुझे जीत हर कि कोई सी भी सिचुएशन हो, मुझे हर सिचुएशन में सफलता पानी है और अपने जीत के परचम लहराने हैं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं उसे कोई नहीं हरा सकता। कहते ना, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जी है, तो अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। देखिए, आपको कोई नहीं हरा सकता। और वो कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, जब आप अपने मन में अच्छा संकल्प लेते हैं, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सही दिशा में आप प्रयत्न करते हैं, तो यकीन मानिए श्रोताओं, आपको सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के सफर की शुरुआत होगी एक बेहतरीन गाने के साथ। इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आऊंगा, तो आपसे और ढेर सारी बातचीत करूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। बेहतरीन गाना आज के सफर की शुरुआत, एक पैपी नंबर के साथ, एक हैप्पी नंबर के साथ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करो, हेलो हाय की मैसेजेस पहुंचाओ, पॉजिटिव वाले मैसेज करो 9837896896 9837896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मुझे फटाक से मैसेज करो यार।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
10: बिंदास मॉर्निंग।

लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। अजी कोई बात नहीं, थोड़ी गड्डी विच फ्रीक्वेंसी साफ नहीं आ रही, तो लोड क्यों लेना यार, ऐप डाउनलोड कर लो ऑनलाइन जाके प्ले स्टोर से, फिर जुड़ जाओ दिल से दिल तक। भूत बंगला का बहुत ही फैबुलस गाना, जिसको सुन के ना मेरे अंदर का डांस बाहर आ जाता है। आई डोंट नो कौन सा भूत सवार हो जाता है डांस का। क्या गाना, व्हाट अ सॉन्ग यार, फैबुलस ट्रैक यार, ऐसे बढ़िया गाने सुनते हैं आनंद के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक है जी आप सभी का, आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ेंगे, वक्त हो गया है स्टूडियो की घड़ी में 9:20। आप आनंद के

श्रोताओं, आज के दिन सन 2011 में 98 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और आज का ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज मानुष को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कारित किया गया था। इसके अलावा फिल्म दबंग को सर्वाधिक मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया था और मलयालम फिल्म को भी आज के दिन अब्बू को एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था। श्रोताओं, तो आज का दिन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खास है। अगर वहीं बात करें आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की, तो दीपक पुनिया का जन्म हुआ सन 1999 में। भारत फ्री स्टाइल पहलवान, वो जो 86 किलो भार वर्ग में खेलते हैं। श्रोताओं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। एनटीसी योहन का भी जन्म हुआ था, जो लंबी कूद के लिए भारतीय खिलाड़ी है, 1947 में आज के दिन इनका जन्म हुआ। एंड पी लीला जी का जन्म हुआ, जो भारतीय तमिल सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी, 1934 में आज के दिन जन्म हुआ था। श्रोताओं, इनका भी नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के राष्ट्रपति थे सन 1913 में, इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, और आपको बताते चले, नाना साहब सन 1897 को इनका भी जन्म हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्रामी के शिल्पकार थे। श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था उनका। और आपको बताते चले, आज का दिन और क्यों महत्वपूर्ण है जरूर बताऊंगा आपको। तमाम सारी चीज़ों के लिए खास है आज का ये दिन, इतिहास के पन्नों में तो इसीलिए दर्ज हो जाते हैं कुछ बेहतरीन नाम, क्योंकि उन्होंने कुछ बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है। और आज की सुबह आपको भी यही कहती है कि उठिए, घर से बाहर निकलिए और पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए। श्रोताओं, ऑफ कोर्स आप में से आधे लोगों की दिन की शुरुआत तो हो गई होगी बेहतरीन तरीके से, और बाकी आपकी सुबह को और भी बेहतर से उम्दा और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ताजा तरीन और बेहतरीन गीत चुन चुन कर लेकर आया हूँ आज आपके रेडियो सेट पर। जी हाँ श्रोताओं, वक्त हो गया है 9:23, प्रोग्राम चल रहा है बिंदास मॉर्निंग। ढेर सारी बातचीत कर रहा हूँ आपसे, क्या है आज के दिन का कोटा आपसे साझा कर रहा था और आपको बताते चले। इसके अलावा श्रोताओं, आज का दिन कुछ और खास चीजों के लिए भी खास है। और दोस्तों, एक चीज और जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आज के दिन को और भी स्पेशल बनाती है। आज कुछ खास स्पेशल दिवस भी मनाए जाते हैं जिन पे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। फिलहाल अभी आपके जो संदेश हैं उसकी तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। इमीडिएटली आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो मैसेज पहुंचाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे पास कुछ संदेश पहुंच चुके हैं। जैसे अभी मेरे पास मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? हाय, मेरा नाम प्रदीप है। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। प्रदीप जी लिखते हैं, आनंद जी, जब जीवन में कुछ बड़ा करना होता है तो उसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, और सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, तब तक हम कुछ अच्छा करेंगे नहीं। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत खूबसूरत विचार आपने साझा किया, आपका दिल से शुक्रिया। एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गजाला है। हाय गजाला जी, गुड मॉर्निंग। और ये मुझे मैसेज करती हैं रहमत नगर से, और इन्होंने मुझे लिखा है, सुप्रभात, आपके गाने सुन के हमारा तो दिन बहुत ही खूबसूरत हो गया है। आनंद जी, बहुत प्यारी बातें आप करते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश और पहुंचा है विक्रम का मेरे पास, ये हनुमान मूर्ति से मैसेज करते हैं और आज बड़े मंगलवार की आप सभी को शुभकामनाएं पहुंचाते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें संदेश किया, आपको भी बड़े मंगलवार की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और श्रोताओं, चलिए मौसम का हाल जरा मैं आपको फटाफट बता देता हूं, क्या कहता है आज का मौसम, यानी कि आज का टेम्परेचर क्या है और क्या रहने वाला है उस पर जरा बात कर लेते हैं। तो श्रोताओं, अगर बात करें अभी न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस, यानी करंट जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं बात करूं, ये तो मिनिमम है, अगर मैक्सिमम की बात करूं तो ये जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो गर्मी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। 50% ह्यूमिडिटी, यानी कि मौसम जो है और ज़्यादा चिपचिपा और गर्माहट से भरा रहने वाला है, यानी कि दोपहर होते होते गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पानी पीते रहना है और अपने परिवार का खास ख्याल रखना है दोस्तों, ठीक है। बाकी डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, और कौन कौन से पानी आज आप पी सकते हैं, आज नहीं मतलब अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बिकॉज दिस इज योर मॉर्निंग मैगजीन शो, ब्रेकफास्ट की बातें होती हैं, खाने पीने की बातें होती हैं, हेल्थ की बातें होती हैं, तमाम सारी आपके स्वास्थ्य को लेकर बातें होती हैं, ढेर सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं जिन पर आपको हम समय समय पर जगाते रहते हैं कि जागो मेरे प्यारे श्रोताओं। आने वाला एक नंबर गाना चाइना गेट से निकाल दिया मैंने, उर्मिला माथुरकर, क्या लगी थी यार इस गाने, व्हाट अ गेटअप। अलका याग्निक जी की बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज, एंड क्या 90s का एंथम है, दिस इज

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना। और ऐसे बढ़िया गाने आप जब सुनते हैं तो एकदम अंदर से जो जोश होता है ना वो बाहर चल जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग है जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। ढेर सारे मैसेजेस के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच एवरीवन इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस करने के लिए। मंगलवार की सुबह है, 19 मई की बहुत ही प्यारी तारीख, और इस खूबसूरत से दिन में आप सभी का खूबसूरती के साथ वेलकम बैक करते हैं जी। वक्त मिला लीजिए, 9:37 हो रहे हैं स्टूडियो क्लॉक में, और अभी एक छोटा सा सवाल जिसमें मैं और आप मिलकर करेंगे एक बढ़िया सा बवाल, आई मीन पॉजिटिव वाला यार। सो बाय द वे, आज की सुबह मेरे को लग रहा है कि आपसे क्या पूछूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं आज की सुबह, या आपको लग रहा है कि यार ये चीज मैं बड़ा मिस करता हूँ। कभी ना कभी कुछ चीजें होती है ना जिनको हम बहुत मिस करते हैं, हमारी रूटीन में होता है, हमारी लाइफ में भी होता है कि हम बहुत सारी चीजों को ना बड़ा मिस करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे सामने होती है ना, तो हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते उस चीज को, बट बाद में ना उसको बड़ा मिस करते हैं, बड़ा फील करते हैं कि यार काशी चीज होती तो कितना बढ़िया होता। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में, तो आज की सुबह अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी चीज को बहुत मिस कर रहे हो, सो प्लीज टेल अस 9837896896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। मंझोली वाला जो कट है ना वो बंद हो गया था किसी कारणवश, आई डोंट नो, मुझे भी उसका एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन अभी वहां पर जो है भाई साहब लगातार ये चल रहा है कि भैया वहां पर उसको दोबारा खुलवाने की मांग चल रही है कि इसको दोबारा से खुलवाना चाहिए। मंझोली चौराहे पर जो बंद किया गया था ना एक कट, उसको दोबारा खोलने की मांग जो है वो उसको किया जा रहा है कि भाई इसको खुलवाया जाए, और जो वहाँ पर क्षेत्रवासी हैं आसपास के लोग हैं उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है और कहा है कि भैया ज़रा इसको जल्दी से खुलवा दो, क्योंकि उसमें यातायात को लेकर जो दिक्कतें हो रही हैं लगभग कुछ टाइम से लोगों को बहुत परेशानियां भी हो रही हैं, काफ़ी दुकानदारों को भी बताया जा रहा है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर जो है अभी चर्चा हो रही है शहर के अंदर। बाकी फिलहाल तो यार कुछ काम भी चल रहा है, जैसे कि मैं हमेशा और बार बार बोलता हूँ कि मुरादाबाद के अंदर बहुत सारी रूट का काम चल रहा है, अपने प्रकाश नगर को ले लो, अपने मानसरोवर को ले लो, और भी ऐसी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर काम चल रहा है अभी मुरादाबाद में, और वो काम इसलिए भी चल रहा है ताकि वो जब चीज़ें सही होंगी तो उसमें हमारा और आपका ही फायदा होगा। तो अगर इसमें भी मुझे लगता है कि वैसे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, जब तक चीज़ें चल रही हैं तब तक तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कुछ आपको, कुछ हमारी जो भी प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ही रहे हैं, बाकी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें भी इसमें देना चाहिए अपना, है ना। और ये जो आजकल जाम बढ़ रहा है इसके बारे में तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अगर आप कहीं जाम में तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप ज़रूर मैसेज करें। गुड मॉर्निंग रेडियो वाला आनंद, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये विक्की सागर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं आपके गाने सुन के बड़ा मजा आता है, थैंक यू सो मच। ये मैसेज किसने किया है वैसे? मुझे यहाँ पर एक मैसेज आया है मेरे पास प्रियंका का, ये लिखती हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी आपको भी, एंड इन्होंने लिखा है मैं आज की सुबह बहुत मिस कर रही हूँ अपना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उस टीवी पे जब मैं दूरदर्शन देखती थी तो मेरे को बड़ा मजा आता था। ओ भाई कहाँ पहुंच गई आप मैडम। और ये लिख रही कि ऐसे बहुत सारी चीजें आनंद, मैं स्कूल की बचपन की बहुत सारी मेमोरी है जो आज भी बड़ा मिस करती हूँ, और सच बताऊं तो अब पहले जैसी वाइब नहीं आती है। स्कूल और कॉलेजेस में दोनों में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, लेकिन आज वो वाइब बहुत फील होती है, बहुत मिस करती हूँ। क्या बात है प्रियंका जी, होश उड़ा दे, ये बातें सुन के मेरा भी होश उड़ा दिया है आपने, सच बता रहा हूँ। ऐसी बातें आपने कर दी है ना, मेरा होश उड़ गया और मैं बचपन में चला गया हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं वैसे बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं भी आज के जमाने का लड़का हूँ, लेकिन होता है यार, होता है, कुछ कुछ होता है मेरे दोस्त। आप रखा जावरा अभी बताओ मेरे को मैसेज करके, बेहतरीन गाना भी मैंने निकाल दिया है, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चमनलाल साहब जुड़े हैं पुतली घर रोड से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ चमनलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर लिसनर जुड़ गए हैं सहारनपुर से, जोन रोजी पल विलीस, मैसेज करते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और एक पिक्चर शेयर करते हैं, जोन साहब लिखते हैं कि रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं तो कुछ जीते जी मर जाते हैं। अयो राम जी, कैसी भारी भारी बातें कर रहे हो। चलो जी गाने सुनो, आने वाला ये सुपर हिट गाना डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एक मैसेज और आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हाय माय नेम इज श्रीदीप, आपका नाम प्रदीप है, श्रीदीप है, पहले ये क्लियर कर देना भाई। ये लिखते हैं आनंद जी आज की सुबह बस मुझे एक ही चीज़ बहुत मैं मिस करता हूँ, वो है मेरी बैटी। आजकल जो है ना थोड़ा सा मैं जिम कर रहा हूँ तो मुझे हेल्दी चीज़ें बता दी है मेरे ट्रेनर ने, इसलिए मैं अपनी बैटी को बहुत मिस करता हूँ, और आज भी अभी सुबह सुबह भी कर रहा हूँ। यार छड्डो बैटी, तुसी बैटी मत पियो, तुसी ग्रीन टी पियो यार, अगर हेल्दी रहना है तो कुछ हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करो। हाँ थोड़ी सी आदत शुरू शुरू में, वो एक्चुअली हमारी हैबिट होती है ना,
इस वजह से वो थोड़ा सा लगता है जब चीजें चेंज हो रही होती हैं तो। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी लौट के आता हूँ एक छोटे से फैंटास्टिक सवाल के साथ। वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आनंद को सुन रहे हैं, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मैंने दस्तक दे दी है जी। सुप्रभात, एक बार फिर से वेलकम बैक है और तमाम सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी प्रोग्राम जो है आपका फेवरेट प्रोग्राम 89.6 FM आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आप सुनते हैं आरजे आनंद के साथ। मंडे टू सैटरडे शो रहता है बिंदास मॉर्निंग। फटाफट से कड़क अपडेट आपको बताते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सोमवार को सामने आई और दिल्ली में रेल मंत्री के गेट, आपको बताते हैं रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर मुंबई अहमदाबाद की हाई स्पीड रेल की मतलब जो है इसकी फोटो ली गई और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये ट्रेन देखने को मिल रही है और इसकी पिक्चर्स एब्सोल्युटली अल्टीमेट। और इसी बात के साथ आपको बताते चलें अभी एक और खास अपडेट कि भैया अब जो है मौसम विभाग की तरफ से एक येलो अलर्ट जारी किया गया है कि भैया इन राज्यों में जो है गर्मी का जो असर है वो काफ़ी अच्छे तगड़े लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या करना है ना, आपने अपना बिल्कुल खासम खास ख्याल रखना है पाजी। आज 19 मई तक जो है इन कुछ जगहों पर जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ दोस्त कि देखिए अगर आप 12 बजे के बाद धूप में निकल रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बचाव करते हुए ही निकलें। कोशिश करें कि 12 से 3 तो अवॉइड ही करें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सुबह से ही तेज धूप और उमस जो है काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है जिससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ मौसम विभाग ने 33 जिलों में लू को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना भी जताई गई है और आपको बता दें जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो ऐसे में आपको जो है आपको स्पेशली अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है दोस्तों। तो आपसे बस हमारा यही निवेदन है, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज कल या अभी मई देखिए जो है अब जाते जाते हैं तो गर्मी ऐसे में बहुत तगड़ी लगने वाली है, स्पेशली लू भी चलने वाली है। तो ऐसे में अपना खास बचाव आपको करना है। लू से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो पानी ही मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना है और अपने साथ पानी की बॉटल हमेशा रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा नींबू पानी या ORS छाछ, इन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम का पन्ना जो शरीर को ठंडा रखता है, कोशिश करें इसका भी इस्तेमाल करें। और आप जो है फल, ताज़े जो मौसमी फल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के सूती ढीले कपड़े अगर आप कोशिश करें पहने तो बहुत ही बढ़िया। एंड साथ ही साथ सर ढककर ही निकलें तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तेज़ धूप से आपको बिल्कुल बचना है क्योंकि ये जो तेज़ धूप है ना यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बाकी तरबूज, खीरा और नारियल पानी जैसी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आप छोटे मोटे सूखे मेवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइट में, इन चीज़ों को शामिल करिए और देखिए फिर आप एकदम फिट रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे और एकदम अच्छे तरीके से जो है अपने इन्जॉय कर पाएंगे इस दिन को। बट उसके लिए बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है ना दोस्त। बाकी के लिए अभी मैं ख्याल रखता हूँ किस चीज़ का, मेरा जाने का भी समय हो रहा है, 9:52 हो रहे हैं यार। स्टूडियो की घड़ी बहुत तेज़ी से आगे भाग रही है और लेकिन हम इसको जाने नहीं देंगे। हम एक छोटा सा सवाल भी आपसे पूछेंगे, जो मैंने कहा है पाजी वो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एक खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद फटाक से मैं लौट कर आता हूँ एक छोटे से कड़क सवाल के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz में। आनंद के साथ हैं आप, जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर।

0: मैं भी बहुत सारे शहरों में गया हूँ, लेकिन मुरादाबाद की बात ही अलग है। मुरादाबाद के जो लोग हैं ना यार, बड़े मतलब एकदम जबरदस्त इंसान है सारे बड़े दिल के दिलदार लोग हैं यार मुरादाबादी साहब लोग। जग घूमया थारे जैसा, ये तो कॉम्प्लीमेंट बनता है यार। चलो फिलहाल इसी गाने के साथ मैं अब आपको अपने सवाल की तरफ ले आता हूँ। फटाफट से आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है कि मैं जो म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ वो कौन से गाने का है। बहुत ही अल्टीमेट सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सा गाना है। बस आपको इमेजिन करना है दो एक्ट्रेस को, मतलब एक एक्टर है एक एक्ट्रेस है, बहुत ही प्यारी जोड़ी है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। वेडिंग का इसमें जो है सीन दिखाया गया है, बेसिकली जो गाने के अंदर पिक्चराइजेशन है वो थोड़ा शादीशुदी का भी है। तो इस गाने के म्यूजिक को पकड़ो, कौन सा गाना है? मैसेज करना है आपको मेरे को 9837896896। बड़ा ढूंढ ढूंढ के म्यूजिक निकाल के लाया हूं कि शायद आप में से कोई पकड़ ले इस गाने को। अपने नाम के साथ सही जवाब आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। बहुत ही अल्टीमेट गाना है, आई एम श्योर आप पहचान जाएंगे और पहचान गए होंगे। अरे वाह, धड़ाधड़ मैसेजेस भी आने लगे, दैट्स वेरी नाइस। मुझे यही उम्मीद थी आपसे। वेल गाइज, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे इमीडिएटली मैसेज करो, ठीक है जी? आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। चलो जी,
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह,
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

भैया आलू जला दू, आई बला को डाल दू, छोड़ बच्चा रहा। जी की हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है। चलो जी, मैं तो मैं कह रहा हूँ पाजी, मजा आ जाता अगर मुझे भी ये चप्पल मिल जाती है। मतलब महाराष्ट्र में एक शादी में दूल्हे राजा को भेंट की गई है भाई साहब 2.5 किलो चांदी की कोल्हापुरी चप्पल। अयो रामा जी, कोल्हापुरी के तो भाई साहब बात ही अलग है, और वो भी चांदी की चप्पल दी गई है। बहुत सोचो तो मतलब अलग ही हैप्पीनेस मिल रही होगी दामाद साहब को। है वो दामाद जी अंगना है पधारे और 2.5 किलो चप्पल लेके हैं जा रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन यार। मतलब महाराष्ट्र के कोल्हापुरी से जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये निकल कर आई है रिपोर्ट, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है। भैया दामाद के प्रति प्रेम और पारंपरिक रस्म निभाने का एक अनोखा उदाहरण सामने आया है। मतलब हर किसी के अपने रिचुअल्स होते हैं, हर किसी की शादियों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग घरेलू रिचुअल्स होते हैं, बट ये रिचुअल्स तो थोड़े अलग ही थे दादा। हाँ जी, तो आपको बता दें अधिक मार्क्स के अवसर पर एक परिवार ने जो है अपने दामाद को 2.5 किलो चांदी से बनी चप्पल जो है वो भी एकदम फेमस, एकदम पॉपुलर, प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल जो है भेंट की है। और इस शाही उपहार की भव्यता की कीमत अब जो है भाई साहब पूरा चर्चा का विषय बन गया है। पूरे सोशल मीडिया पर इनकी चप्पल जो है वो छाई हुई है, बताई चप्पल छाई हुई है, शादी की चप्पल। हाँ 4 मिनट, मैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ भैया। 22 मई को उदयपुर में जो है शादी करेंगे हार्दिक पांड्या। एक्शन वैक्शन हो जा तू भी। चलो जी, अगली कंपनी एंजॉय करो खुशी के साथ, मैं निकलता हूँ, खिसकता हूँ, मिलता हूँ आपको कल सुबह इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। वेंसडे मॉर्निंग में होंगी ढेर सारी बातचीत, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लेकिन ना ना ना ना, जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था बताओ जरा कौन से गाने का म्यूजिक है। आपको गेस करना था मेरे भैया, बहुत सारे लोगों ने हमको सही जवाब दिए हैं यार। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, और ये मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सच में बहुत ही उम्दा हो, बहुत ही जबरदस्त हो और बहुत ही मस्त हो यार, एकदम समझदार हो। मतलब सबने सही जवाब दे दिए भाई साहब, एक ही बारी में सबके बढ़िया बढ़िया आंसर आए मेरे पास। तालियां आप सभी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जनाबे अली, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। गर्ल्स एंड बॉय बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेरे पास जो सही जवाब आया था ना, वो निशा का मेरे पास मैसेज आया था, एंड इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया था आज की सुबह मुरादाबाद से, बट ये इन्होंने कहाँ से लिखा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। नंबर की 4 डिजिट 1146। कंग्रेचुलेशन, आप आज की सुबह हमारे शो के विनर बनते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ जी, और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और लक्ष्मी देवी सूर्यनगर से थी, इन्होंने भी सही जवाब दिया था, गाने के बोलते एक दिल है, हाँ दिल ही तो है, कुछ गाना है अक्षय कुमार एंड करिश्मा कपूर पर, पिक्चराइजेशन इस गाने का बहुत ही बेहतरीन गाना है जी। अभी मैं फिलहाल आपसे लूंगा जाने की इजाजत, आप सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन एंड ब्यूटीफुल शो सुन रहे थे फिलहाल तो, लेकिन अब आप सुनेंगे आरजी खुशी का नेक्स्ट वाला शो। यही वाला गाना था, मैंने निकाल दिया फटाफट। शानुदा एंड अलका याग्निक जी की ब्यूटीफुल आवाज, यू थिंक अबाउट अक्षय कुमार एंड करिश्मा कपूर। आपको पता है करिश्मा कपूर का ओरिजिनल नेम क्या है? लोलो। दूसरी जो है उनका नाम है बेबो, एंड करीना कपूर इज बेबो एंड करिश्मा कपूर इज लोलो। दोनों के निक नेम है, बड़े डिफरेंट नेम है यार। वैसे करिश्मा कपूर बड़ी है, करीना कपूर छोटी है। हमको लगता था पहले करीना बड़ी है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं लोलो बड़ी है, बेबो छोटी है। मैं कहा ये बढ़िया यार। तुझे प्यार से देखने वाला, गुड मॉर्निंग आनंद जी, मूवी है एक रिश्ता, सॉन्ग है तुझे प्यार से देखने वाला, क्या बात है जी, कोई है ही नहीं बाजी। इसे जोक से बात यार, ये हमारे पास मैसेज आ रहा था रिजवान खान साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर मैसेज करने के लिए। और मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है, छत्तीसगढ़ से ये मेरे पास मैसेज आया था बबलू साहू जी का। मयंक शर्मा जुड़े हैं पीतल बस्ती से, लिखते हैं राम राम आनंद भाई, जय श्री राम आपको भी सर, सुबह सुबह एनर्जेटिक सॉन्ग्स और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का डोज सब कुछ तो मिलता है आपके शो पर आनंद जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये भास्कर कुमार तेजस्वी मुझे मैसेज कर रहे हैं आज की सुबह, ये मुझे मैसेज कहाँ से आया है, जमालपुर बिहार से। अरे वाह क्या बात है साहब, बहुत दूर से आपने मैसेज किया है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमको बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। हाँ
हमारे पास मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? हाय, गुड मॉर्निंग. आज हेल्थ से रिलेटेड योगा इन्फॉर्मेशन दी आपने, हम सभी को बहुत अच्छी लगी, आपका दिल से थैंक यू. शबीना खान मेरे साथ जुड़ी है रहमत नगर से. एक पिक्चर शेयर करती है, लिखती है, सीधा सादा होने का मतलब ऐसा अपराध है जिसकी सजा देने में दुनिया कभी नहीं चूकती. क्या कह सकते हैं, लेकिन हम सीधे लोग ना बड़े अच्छे होते हैं यार. सच बताऊं, हमारे साथ कभी कोई गलत करता ही नहीं है, एक्चुअली अपने साथ करता है. गुड मॉर्निंग, हाय, मेरा नाम वंश है. गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हाल चाल है वंश? थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. विकास जी का मैसेज आया था मुरादाबाद से, इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया था. नंबर की 4 डिजिट है 030. थैंक यू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड एक मैसेज और पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग, हाय, माय नेम इज रोहन. हाय रोहन, गुड मॉर्निंग. कश्मीर से भी हमारे पास मैसेज पहुंचा था आज की सुबह. गाइस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए. अभी के लिए आरजे आनंद कहेगा साइनिंग ऑफ. अपना जो है ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और मस्त रहिए, झकास रहिए और पॉजिटिव रहिए और लाइफ को जो है बिल्कुल सॉर्टेड रखिए, ईजी रखिए. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत है नहीं भैया, हम बता रहे हैं आपको. हमारे पास मैसेज आया था रईस अहमद जी का, गुड मॉर्निंग जी. ये मेरे पास मैसेज पहुँचा था पागवाड़ा से, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू एवरीबॉडी, इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप किए आप लोगों ने, दिल से शुक्रिया. आगे भी आपके लिए ऐसी तालियां और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे. फिलहाल आप सुनते रहिए आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास. 10:09 आनंद को सुन रहे थे आप. फिलहाल मैं यहाँ से लेता हूँ अब जाने की इजाजत, कल मिलते हैं, बाय बाय.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओं, वक्त हुआ है अभी 10:18 और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है ट्यूसडे का, मंगलवार का। जी हाँ, आप सभी को जय श्री राम। और साथियों, कहते हैं ना कि भगवान की हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो अच्छा लगना कुछ टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन अच्छा हमारे लिए जो होता है वो लॉन्ग टर्म बेस्ट होता है। तो अगर आप किसी चीज़ की आशा करते हैं वो आपको नहीं मिलता है, तो धैर्य रखिए, क्योंकि उसमें प्रभु की इच्छा नहीं होती है, और जिसमें प्रभु की इच्छा होती है वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट होती है। दोस्तों, आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम शुरू हो चुका है मॉर्निंग मसाला, और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपके लिए। और आप भी इस ब्यूटीफुल शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। देखिए साथियों, गर्मी तो बहुत है लेकिन हवाएं भी चल रही हैं। और इस खूबसूरत से मौसम का लुत्फ उठाइए, लेकिन हाँ, अपना ख्याल भी रखिए एवरीवन। और एक खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए आज की मॉर्निंग लौट कर आती हूँ मैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के इस पार। दोस्तों, आप भी अपने संदेश हमें पहुँचाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अगर आप अभी अपने कामों में व्यस्त हैं तो अच्छी बात है, प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो शायद आपको नहीं मालूम है, वो खुशी यहाँ पर आपको बताएगी। एंड आज क्या कुछ खास है उसके लिए आपको बने रहना है, चिपके रहना है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। जाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और प्यारी सी स्माइल भी अपने चेहरे पर ऐसे ही बरकरार रखिए। दोस्तों, आप जब मुस्कुराते हैं ना, आप सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। और एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
5: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी सैयारा से, और इस ट्रैक को गाया था विशाल मिश्रा साथ में हंसिका पारिक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में। प्यारा सा ट्रैक आज की सुबह आपके नाम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो मॉर्निंग मसाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी लेकर आई हूं एक बेहद खास बात उन लोगों के नाम जो सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि हर घर की मुस्कान और सेहत की रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, आज 19 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार डॉक्टर दिवस, यानी उन डॉक्टर्स को धन्यवाद कहने का दिन जो हमारे परिवार के हर सदस्य की तकलीफ को समझते हैं, जो सिर्फ दवाई नहीं देते बल्कि भरोसा, हिम्मत और अपनापन भी देते हैं। साथियों, एक पारिवारिक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि पूरे परिवार को एक स्वस्थ जीवन जीने का विश्वास दिलाते हैं। और सच ही तो है, जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले जिस नाम पर भरोसा होता है वो होता है, जी हाँ, डॉक्टर साहब। वो होते हैं डॉक्टर साहब। उनकी एक मुस्कान, उनकी छोटी सी सलाह और उनका अपनापन मरीज को आधा ठीक वही कर देते हैं। जब अच्छा व्यवहार होता है ना डॉक्टर साहब का, मुस्कुराकर बोलते हैं आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, तो मरीज आधा ठीक तो वही हो जाते हैं। और आज का दिन उन सभी डॉक्टर्स को समर्पित है जो दिन रात बिना थके हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, कभी अपने आराम की परवाह किए बिना हर दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज आप भी अपने फैमिली डॉक्टर को एक प्यारा सा थैंक यू ज़रूर कहिएगा, क्योंकि स्वस्थ जीवन से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। और इसी खूबसूरत सी सोच के साथ अब वक्त है एक प्यारे से गीत का जो समर्पित है हमारे सभी डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर हीरोज़ को, क्योंकि एवरीवन, अगर हमारी लाइफ में फैमिली डॉक्टर्स नहीं होंगे तो कभी कभी होता है ना कि हमें आधी रात में कोई प्रॉब्लम होने लगती है, किसी की भी फैमिली मेम्बर्स में तबीयत ख़राब हो जाती है, जो हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं हम तुरंत उनको फ़ोन करते हैं और वो आधी रात में, चाहे रात के 2 बजे हों या 1 बजे हो, घर पर तुरंत आ जाते हैं। तो आज उनको ही थैंक यू कहने का दिन है, और आपके भी जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको एक थैंक यू कहिएगा। एक खूबसूरत सा गीत मैं यहाँ पर सुनवाती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों, आप भी इस खूबसूरत कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और सुनवाती हूँ मैं आपको एक प्यारा सा गाना, तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, और खुशी कहती है कि दिल से मुस्कुराना है। बहुत प्यारे लगते हैं आप सब मुस्कुराते हुए। और ये ट्रैक हम सभी डॉक्टर्स को डेडिकेट करते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है। और दोस्तों, मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप कहीं मत जाइए। खुशी आपसे कहती है कि आप भी हमें संदेश अपने अपने पहुँचाइए, अगर कुछ बात आप कहना चाहते हैं, लाखों श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि बहुत आवश्यक है, तो बिल्कुल हमें मैसेज कीजिएगा, अपना वॉइस नोट भी हमें पहुँचा सकते हैं। और ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, एंजॉय कीजिएगा। लौट कर आती हूँ मैं बस अभी।
1: To ruin a beautiful future.

0: ही अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। सेम टाइम सेम जगह हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। यहाँ पर वक्त हुआ है एवरीवन 10:46, और दोस्तों जेब पर महंगाई की मार एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, और इस बार करीबन 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 98 रुपये के पार पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल भी 91 रुपये से ज़्यादा हो गया है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब इसका असर सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि आने वाले दिनों में फल, सब्जियां, किराना और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर राहत कब मिलेगी, क्योंकि महंगाई का असर सीधे आम इंसान की ज़िंदगी और बजट पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद का दाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, मुस्कुराहट हमेशा फ्री रहनी चाहिए। क्या बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आपके महीने का बजट भी अभी गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन आपके जो संदेश आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ यहाँ पर। बैक टू बैक आप सभी के लगातार संदेश आ रहे हैं, और क्या पहुँचाते हैं आज की मॉर्निंग हमारे रियल लिसनर्स, उनकी ज़रा बातें जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप हमारे लिए। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले संदेश हमें पहुँचाते हैं नेपा नगर MPC सुदर्शन शाह जी, साथ में पल्लवी शाह जी हैं, प्रखर शाह जी हैं, कुशल शाह जी हैं, और ये कहते हैं RJ खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार आपको भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी का, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर कश्मीर से महराजुद्दीन जी का आया है, कहते हैं RJ जी आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आदरणीय RJ जी को हमारा आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बहुत ही अच्छे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं। ये मैसेज हमें मिला है धनूरी तिली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया यान बाबू जी का, कहते हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारा संदेश शामिल किया, मोस्ट वेलकम सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाई माई नेम इज निशा, मुरादाबाद से निशा जी का मैसेज आया है, ये गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हाय मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड रौनक का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पूजा जी का विकास नगर से, और कहती हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातों का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा, और जो भी जानकारियाँ हैं, अपडेट्स हैं, वो सब आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए, आप कहीं मत जाइए, खुशी आपसे कहती है कि रेडियो की स्विंग को बिल्कुल भी मत घुमाइए, और एक खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए इंजॉय कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ अपने संदेश भी हमें पहुँचाइए बिना किसी देरी के। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896, बताइएगा क्या कर रहे हैं आप, गर्मी से परेशान हैं? ओ हो, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, गर्मी है उससे राहत पाने के लिए आपको क्या करना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, हल्के लाइट कलर के, और ढेर सारा पानी पीना है। एंड आप बहुत सारे जूसेस हैं जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, उसका भरपूर आनंद उठाइए, गर्मियों का इतना खूबसूरत सा मौसम है और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो उनको खाइए पिए। बाकी खूबसूरत से गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और समय हुआ है अभी राइट नाउ 11 बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और खूबसूरत गानों के साथ खुशी फिर से हाजिर हो चुकी है आप सभी के बीच। दोस्तों देखिए, इस समय ना गर्मी अपने चरम पर है और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम सही जानकारी पर भरोसा करें और घबराने की बजाय सावधानी बरतें। मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में हीट वेव यानी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या चाहते हैं दोस्तों, लेकिन 55 डिग्री तापमान और मोबाइल फटने जैसी बातें हर जगह सही या आधारित नहीं होती हैं, इसीलिए किसी भी वायरल मैसेज को बिना जांचे आगे ना बढ़ाएं, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हाँ, इतनी गर्मी में खुद को और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज़ धूप से बचें और बाहर जाने से भी बचें एवरीवन। एंड घर से बाहर जाएं तो पानी अवश्य अपने साथ रखें, पानी की बॉटल अपने साथ लेकर जाएं, सर को ढककर और हल्के रंग के कपड़े पहनिए। एंड अपने खान पीन में दही, छाछ, नींबू पानी, बेल का शरबत, नारियल पानी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी शामिल करें ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। अगर किसी को चक्कर आए, घबराहट हो, बहुत कमज़ोरी लगे या तबीयत अचानक ख़राब हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और दोस्तों, सिर्फ इंसान का ही नहीं, इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। अपने घर की छत पर या बाहर किसी कोने में पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ये छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और सुनते रहिए अपना शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस जानकारी के बाद, क्योंकि जानकारियां होना भी बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। समय समय पर जानकारियां मिलती हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। तो अभी जो संदेश यहाँ पर आ रहे हैं बैक टू बैक हमारे श्रोताओं के, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? खुशी जी तो हमेशा खुश रहती हैं और पूरी कोशिश भी करती हैं कि आप सबको ढेर सारी खुशियां दें। थैंक यू सो मच रिहाना जी, आपने अपना संदेश पहुंचाया। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है बीजना मुरादाबाद से राजीव सिंह यादव जी का, साथ में कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान, सोफिया खान, और ये कहते हैं एफएम मुरादाबाद के नाम एक प्यारा सा पैगाम, गुड मॉर्निंग मुरादाबाद एफएम के सभी शानदार आरजीज को, सुबह सुबह आपकी ये मखमली आवाज़ और ज़बरदस्त एनर्जी बाकी पूरे दिन बना देती है। आप सच में मुरादाबाद के हर दिल की धड़कन हैं आरजे साहिबा। ओहो हो, क्या बात है, इतना बड़ा मैसेज आपने आज के कार्यक्रम में लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये हमें जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पलवली जी अपना गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं एवरी डे की तरह। थैंक यू सो मच सर अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, साथ में साइमा नवाज हैं, हसन नवाज, बाबू अहमद एंड बीबी चाहत। ओहो, सभी के नाम सर ने शामिल किए हैं और ये हमें आदाब पहुंचाते हैं, आपको भी हमारा आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मोहम्मद इशरत जी का, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं कि मैम हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
दोस्तों अभी लौट कर आएंगे तो आपसे एक बहुत ही खूबसूरत सा हम सवाल पूछने वाले हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड है, और देखते हैं कि हमारे कितने श्रोता फिल्मी हैं, मतलब फिल्मों की शौकीन है। एंड वो एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा गीत यहाँ पर सुनवाते हैं। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है आज की मॉर्निंग जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में। देखिए बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बारिश वाला गाना तो सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा फील तो कर सकते हैं ना इतनी गर्मी में। थोड़े कूल गाने होने चाहिए ना जो माइंड को एकदम कूल रखें, और आपका जब माइंड कूल रहेगा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इजीली आप कर पाएंगे ना एवरीवन। चलिए खूबसूरत सा ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से ट्रैक के इस बार। गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और एवरीवन, यहां पर वक्त हुआ है 11:18 और हमने आपसे कहा था कि जब हम आएंगे तो आपसे बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस कलाकार की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हुनर सच्चा हो तो चेहरा नहीं काम पहचाना जाता है। जी हाँ, आज ऐसे ही एक खूबसूरत अभिनेता का बर्थडे है एंड बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग दे रही हूँ। आपको पहचानना है कि वो डायलॉग कौन सी फिल्म का है, आपको मुझे बताना है। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला और देखते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर हैं, वो कितने एक्टिव हैं और कितने बड़े फिल्मी हैं। अभी आपका छोटा सा टेस्ट हम ले लेते हैं एवरीवन और सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग जो मैं अभी बात कर रही हूँ। आपको पहचाना है कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है और कौन कौन से एक्टर हैं इस डायलॉग में, ये आपको मुझे बताना है। एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये जो ब्यूटीफुल डायलॉग आज की सुबह मैंने लिया है।
1: भाईजान, बजरंगबली से जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। मुन्नी अब शायद अब अपने माँ बाप के साथ में है।
2: शायद,
1: हाँ शायद।
3: चलो चलो पवन, चलो।
2: जान भाई, मुन्नी
1: भाईजान, बजरंग बली से जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। मुन्नी अब शायद अब अपने माँ बाप के साथ में है।
2: शायद,
1: हाँ शायद।
3: चलो चलो पवन, चलो।
0: जी दोस्तों, आपको बस यही गेस करना है कि आप मुझे बताइए जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म का है और कौन कौन से एक्टर इस डायलॉग को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम आपको मुझे बताना है और कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है ये भी आपको मुझे बताना है। फटाफट से अपना मैसेज हमें पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689। हम भी तो जाने कि हमारे श्रोता कितने फिल्मी हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के मैसेज आ रहे हैं तो उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप इस डायलॉग को पहचानिए और हमें बताइए कि कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है। बिना किसी देरी के व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताती हूँ 9833789689। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, रियली ए ग्रेट शो ऑफ द डे, वेल डन, थैंक्स आरजे खुशी, तुसी ग्रेट हो, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी एंड साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक कसाना जी हैं, आदित्य कसाना जी हैं लदावली से, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुलाम जिलानी पाशा जी का एंड ये हमें आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आपको हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूला उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी का। और ये कहते हैं कि हमें किसी भी कार्यक्रम में आप शामिल कर लीजिएगा, आपने हमारा संदेश शामिल किया उसके लिए शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, और भी आपसे बातचीत करेंगे एंड सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत आपको।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और एवरीवन, अभी वक्त हुआ है यहाँ पर 11:31 और बहुत ही खूबसूरत सा आपने ट्रैक एंजॉय किया दिलजीत की खूबसूरत सी आवाज़ में। दिलजीत सर जो है ना, वो सबका दिल जीत लेते हैं। और एवरीवन, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर कुमकुम भी हैं एंड इनसे थोड़ा हाय हेलो करते हैं और जानते हैं कि आज सुबह ये कुछ खा कर आई या नहीं आई, क्योंकि ये इतनी पतली है, कुछ खाती है या नहीं पता नहीं। आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं चलता है कि कुछ खाती भी हो आप। हाय कुमकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका।
1: हाय खुशी जी, बहुत बहुत थैंक यू फॉर माय वेलकम। और मैं बहुत खुश हूँ आज, बट ना थोड़ी सी ना सुबह जब आपने मुझे पूछा ना खा के आई हो नहीं आई हो,
0: हाँ
1: माँ मेरी नींदें उड़ गई।
0: नींदें क्यों उड़ गई सुबह सुबह?
1: हाँ, मेरा मन था ब्रेड पकौड़े खाने का।
0: अच्छा,
1: गेस्ट आने वाले थे, सोचा था आज ब्रेड पकौड़ा खाते हैं और कुछ टेस्टी सा बनाते हैं।
0: हाँ।
1: पर जब शॉप पे गई तो पता चला ब्रेड महंगी हो गई है, मतलब अब हमारा सुबह का नाश्ता भी महंगा हो गया।
0: ओह माय गॉड, रियली?
1: जी, मुझे तो ब्रेड से इतनी सारी चीजें पसंद है खानी, मतलब अब तो चाय बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा यार।
0: अच्छा, वैसे ब्रेड की बात आप कर रहे हो तो ब्रेड से रसगुल्ले भी बनते हैं, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, इतनी चीजें ब्रेड से बनाई जाती हैं।
1: ब्रेड से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ब्रेड क्रम्स का यूज बहुत होता है।
0: हाँ,
1: सही, कुरकुरी डिशेस के लिए यार।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दोस्तों, बिल्कुल यू नो कुमकुम ने सही बोला है कि सुबह का नाश्ता भी अब हुआ महंगा। ब्रेड की कीमत 5 रुपए तक बढ़ाई गई है एंड अब देखिए क्या कर सकते हैं एवरीवन, महंगा हो या सस्ता खाना तो पड़ेगा ही। क्यों,
1: जिसको पसंद है
0: वो
1: पसंद
0: तो खाए गई। हाँ, वैसे आपने आज ब्रेड पकौड़े की बात की है तो बनाएंगे आप, बताओ या नहीं?
1: अब ब्रेड पकौड़े तो नहीं, पर हाँ ब्रेड रोल जरूर बनाने वाली हूँ।
0: ठीक है, तो फिर मेरे को भी इनवाइट करना। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे कुमकुम, आपने कुकिंग करना कब से सीखा, लाइक कि मुझे बनाना चाहिए, क्या क्या डिश आपको बनानी आती है? जो
1: कुकिंग ना मेरे फादर ने मुझे सिखाई है।
0: अच्छा, आपकी पापा जी ने आपको सिखाई है?
1: एक्चुअली जब मम्मी करती थी ना तो डांटती थी मुझे बहुत।
0: हाँ,
1: पर जब पापा बताते थे तो पापा मम्मी को कहते थे एक एक चीज बताया कर कि कौन सी कैसे डाल ले, तो वहाँ से शौक बना मेरा खाने का।
0: अच्छा, हाँ एक्चुअली ना जो पापा जी होते हैं वो बेटियों को हमेशा बड़े प्यार से पोलाइटली गाइड करते हैं, सिखाते हैं।
1: लाडली बेटी जो होती
0: है। हाँ, लाडली बिटिया होती हैं पापा जी की। और मम्मा हमेशा कुछ ना कुछ उसमें क्या बोलते हैं, नुक्स निकाल ही देती हैं, गलतियाँ कि तुमने ये गलत किया है और वो गलत किया। लेकिन पापा जी अगर गलतियाँ हम करते भी है ना तो वो उनको प्यार से गाइड करते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, आज गलत बनाए कल आप अच्छा भी बनाओगे, तो उससे दिल करता है कि हाँ हम कुछ और अच्छा भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली राइट ना?
1: यू आर राइट।
0: हाँ, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर तो अभी गपशप चलती रहेंगी, लेकिन मैंने आपसे एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉलीवुड से रिलेटेड एक डायलॉग पूछा था। जी हाँ, आप फिल्मों की शौकीन है मैं जानती हूँ, तो मैंने आपसे एक डायलॉग मालूम किया था। वो कौन सा डायलॉग है मैं आपको एक बार फिर से सुनवा देती हूँ, जो लिसनर्स अभी अभी कनेक्ट हुए हैं उनको नहीं मालूम है। तो खुशी यहाँ पर आपके साथ है, आप चिंता मत करो, ये प्यारा सा डायलॉग फिर से मैं आपको सुनवाती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि जो डायलॉग मैं प्ले कर रही हूँ कौन सी फिल्म से है और कौन कौन से एक्टर हैं, आप मुझे बताइएगा। मैं एक बार फिर से आपको सुनवा देती हूँ।
2: मम्मी, भाईजान, बजरंगबली से जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। मुन्नी अब शायद अब अपने माँ बाप के साथ में है।
3: शायद?
2: हाँ, शायद।
3: चलो चलो पवन चलो।
0: बस एवरीवन, आपको इतना ही काम करना है, बताना है कि जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म से है और कौन कौन से एक्टर इस फिल्म में हैं। फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए और टाइप कीजिएगा मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9837896896 पर, अपना नाम, अपना राइट आंसर और आप कौन से सिटी से हैं ये भी आप अपना ज़रूर बताइएगा। विलेज से हैं या सिटी से हैं वो तो आप बताएंगी, जहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं शो में, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं एंड राइट आंसर के साथ हमारे बहुत सारे श्रोता कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी हमारे श्रोता जो हैं वो भी कनेक्ट हो जाए फटाफट से बिना किसी देरी के, और मैं सुनवाती हूँ तब तक एक और खूबसूरत सा शानदार सा ट्रैक। अब आप पहचान ही जाएंगे कि किन की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही शानदार एक्टर का बर्थडे है एंड उनका नाम, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ, प्यारे से स्माइल कर दीजिएगा। ओ हो, इतनी कंजूसी ना, ऐसा मत करो। देखिए, इतने प्यारे प्यारे ट्रैक हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ताकि आपका जो माइंड है वो एकदम कूल हो जाए और इस चिलचिलाती गर्मी में आपको राहत मिल जाए। एंड दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस कलाकार की जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर हुनर सच्चा हो तो चेहरा नहीं काम पहचाना जाता है। जी हाँ, आज जन्मदिन है बेहतरीन अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और दोस्तों, दिल्ली में चौकीदार तक की छोटी छोटी रोल किए, कई बार रिजेक्ट हुए लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिर वो समय आया जब उनकी मेहनत रंग लेकर आई और हमने एक डायलॉग भी आपसे पूछा था, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है बजरंगी भाईजान, और उसी फिल्म का हमने एक डायलॉग भी पूछा था आपसे। हमने आपसे मालूम किया था कि हमें बताइएगा कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है और कौन कौन से एक्टर उस फिल्म में हैं। तो हमारे पास जो मैसेज आए हैं उनको जल्दी से शामिल करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि जो श्रोता है ना वो भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैम हमारा कब नाम लेने वाली है। तो आप निश्चिंत रहिए, अब आप ही की बारी है और हमारे पास यहाँ पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। एंड सबसे पहले हमें राइट आंसर पहुँचाया है रिजवान खान जी ने जामा मस्जिद अकबानपुर से। कहते हैं मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं मैम आपने जो डायलॉग प्ले किया है ना, ये मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान और एक्टर हैं सलमान खान एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी जुड़े हैं, साथ में इनकी मिसेज भी हैं निखत परवीन और इनका बेटा भी है मोहम्मद रूहान खान। थैंक यू सो मच सर, आपने राइट आंसर पहुँचाया है, लगता है कि आप बहुत बड़े फिल्मी हैं। हाँ, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है डॉक्टर सुरेश कुमार जी का, प्रेम नगर लाइन पार मुरादाबाद से। कहते हैं कि मैम मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान और उसमें एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, साथ में सलमान खान जी। राइट आंसर, थैंक यू सो मच सर अपना राइट आंसर पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन सर। कहते हैं आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ट्रैक भी बहुत अच्छे अच्छे प्ले करती है, उनके साथ साथ आप जानकारियां भी बहुत ही प्यारी लेकर आती हैं। अभी आपने गर्मी से किस तरह बचना है उसके विषय में आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। धूप में निकला ना करो रूप की रानी। ओ हो, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए। बहुत खूबसूरत ये ट्रैक भी है एंड सही कहा है आपने सर। देखिए, चाहे राजा हो या रानी, धूप में किसी को नहीं निकलना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिटनेस फिट रहें एंड हेल्दी रहें तो धूप से बचिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और सर ने भी राइट आंसर पहुँचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, हम आकर शामिल करते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से। इस ट्रैक को आप एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे सी गाने के उस पार। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पानी पीते रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपके पूरे घर में रौनक आ जाती है। तो मुस्कुराने में ना कोई कंजूसी मत किया करो आप, और ये प्यारा से गाने एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: मोहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है आरजी खुशी आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही बेहतरीन ट्रैक एंजॉय किया, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए, किशोर कुमार साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। और आप क्या कहना चाह रही थी कुमकुम, बताइएगा।
1: हाँ, जैसे कि हमारा गाना रहा धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए,
0: राइट
1: जी। जिस जिसको अपने काले रंग को ना पड़ने देने की थोड़ी सी भी टेंशन है, वो धूप में निकलने से पहले एक बार सनस्क्रीन जरूर लगा ले, गॉगल्स डाले, छाता अप्लाई करे, ये सब चीजें आप जरूर लें। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तभी धूप में निकले, वरना अपने ज्यादातर काम घर से ही करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर कोई मोस्ट काम है आपका, बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्जेंट है आपको बाहर जाना, तो जाइए, लेकिन सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए। और अगर घर से ही काम आपका कम्प्लीट हो रहा है तो ज्यादा बेस्ट है, धूप में जाने से बचिए एवरीवन, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही आपका सुखमय होगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे, अन्यथा तो सब व्यर्थ ही है। इसीलिए दोस्तों, और यहाँ पर बैक टू बैक जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। बहुत सारे श्रोता हैं जो राइट आंसर के साथ जुड़े हैं, एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं शहीद शारिक अली जी, साथ में इनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी जी को, हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, 12 बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं सुनील कुमार जी, बांका बिहारी से जुड़े हैं हमारे साथ, और कहते हैं आप से आपने जो सवाल मैम हमें सुनाया था, जो आपका डायलॉग था फिल्म का, वो हम सुन नहीं पाए पूरी तरह, तो जवाब भी हम देने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, लेकिन हम आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का, लोधीपुर मुरादाबाद से, कहते हैं खुशी जी आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, शुक्रिया आपका सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, और ये कहते हैं दिलकश सॉन्ग्स के साथ साथ दिल प्रिय प्रोग्राम, मन पसंद हो स्टार जी खुशी जी, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आप प्ले करती हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है सबीना खान जी का, रहमत नगर मुरादाबाद से, और राइट आंसर के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। कहती हैं मैम आपने जो डायलॉग प्ले किया था उस फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान, और जो डायलॉग प्ले कर रहे थे वो थे एक्टर सलमान खान एंड साथ में नवाजुद्दीन सदीकी जी। एग्जैक्टली

राइट, सही आंसर के साथ सबीना खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आपके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए क्योंकि आपने इतने जल्दी फटाफट से राइट आंसर दिए हैं। शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने राइट आंसर दिए हैं। अब मुझे यकीन हो गया है पूरा 101% कि आप बहुत बड़े फिल्मी हैं और गानों के तो आप दीवाने हैं, नो डाउट। तो दोस्तों अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है और आप सभी को अगेन शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब हमारे साथ जुड़े। और हम जाते जाते बस यही कहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए और हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा एंड जो मौसमी फ्रूट्स हैं उनका भी सेवन कीजिए एंड छाछ, बेल का शरबत, नींबू पानी, सिकंजी, गन्ने का जूस, इन सब का सेवन कीजिए और इस भरपूर गर्मी का आनंद उठाइए। घर पर ही रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक खूबसूरत सा गीत मैं आप सभी के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ, आप सभी के लिए स्पेशली, तो इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन। और आपके लिए सेहत से जुड़े बहुत सारे शोज हम प्ले करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं आपकी सेहत से रिलेटेड एंड कैसे आपको गर्मी से बचना है एंड क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। अब खुशी लेती है आपसे जाने की अनुमति। नमस्कार एवरीवन।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना कर तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
8: धन्यवाद आरजी रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
7: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
8: देखिए आर्जेरीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
7: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
8: हाँ बिल्कुल, होती है। और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्ट्रेंथ विद साइंस, और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
7: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
8: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे

0: क्या होता है?
1: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियाँ फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन चुनौतियाँ अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीवी जैसी बीमारियाँ भारत में बहुत ज्यादा हैं और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहाँ मुफ्त जाँच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है, हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है, बहुत सी दवाइयाँ मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
1: RJ रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था

0: सीढ़ी की तरह है। सबसे नीची यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहां भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
0: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
1: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहां और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहां सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंधे मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें उसे सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सके?
0: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्त्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई, और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
2: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
2: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है, अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
0: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
2: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है। ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इस सब को मसल कर बच्चे को दिया जा सकता है।
0: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए। ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
0: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
2: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
2: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
0: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
2: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
0: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
2: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
0: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
2: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
0: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
2: हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती हैं जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
2: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
0: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
2: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: सही कहा भाभी, और दादी की क्या भूमिका होती है?
2: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
0: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
2: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
0: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
2: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
0: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही लाभ कई,
0: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ, पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
1: वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
3: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
1: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
1: तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर होता क्या है?
3: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन, जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
1: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
3: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
1: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
3: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
1: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
3: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता, बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
1: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
3: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
1: और प्रोटीन?
3: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
1: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
3: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
1: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
3: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
0: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
3: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
3: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
3: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
0: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
3: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है। ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
0: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
3: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
0: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
3: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है। इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
0: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
3: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
0: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
3: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
0: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
3: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
0: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
3: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
0: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
3: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
0: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
3: बिल्कुल। आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वह ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
0: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
3: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
0: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
3: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
0: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
3: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के 4th महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जाँच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
0: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
3: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
0: क्या आरती ने सलाह मानी?
3: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
0: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा?
3: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
0: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
3: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
0: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
3: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
0: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
3: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
0: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
3: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
0: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
3: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
0: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
3: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
0: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
3: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
0: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
0: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
3: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से ही
0: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत से ही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
9: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। आपके साथ मैं हूँ आशीष और
11: मैं हूँ भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
10: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
11: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
10: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
11: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
10: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
7: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
12: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
7: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
12: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
11: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
10: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
11: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
13: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ।
14: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
13: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
11: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
13: तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है, ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती और अगर देख भी पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
11: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी, बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी, ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
13: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
11: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
13: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
11: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
13: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है। इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
11: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
13: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
11: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दे। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
13: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
11: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
13: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को, इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
11: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
13: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
11: कल है।
10: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
9: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
15: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
9: अरे वाह।
15: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
9: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
16: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
17: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन, जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये पूरे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है, आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
18: अच्छे हैं
17: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
18: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
17: जी
18: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
17: रेडियो के माध्यम से
18: पहुँचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
17: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे मेरा क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
18: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
17: जी,
18: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसटीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्ययोजना बना के उस पर काम करते
17: हैं। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं, इसी में एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
18: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उसपे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
17: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना, एकदम से ये आपदा ही होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
18: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
17: जी,
18: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती है। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयरनेस फेज बोलते हैं।
17: right.
18: और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है,
17: 100%.
18: लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहां पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है। उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना, जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हमें यहाँ पे कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है शॉर्ट सर्किट से होती है, शॉर्ट सर्किट से, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई, तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर है उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही।
17: बिल्कुल।
18: तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं
17: जी।
18: तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है पब्लिक के साथ।
17: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
18: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
17: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसने सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए, तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
18: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं, तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहां पे ना रखें, क्योंकि

0: शौकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहाँ इस तरह की बात आती है तो वहाँ पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
0: जी।
1: सो दोस्तों, आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूँ वही जो लोग पशुपालन करते हैं, तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
0: देखिए, पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
1: करेक्ट।
0: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से, भयंकर लू से प्रभावित होता है, वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर ले एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारे, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय, उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: देखिए, आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
1: जी जी,
0: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
0: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें हैं उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू का होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं?
0: देखिए, मैंने जागरूकता के स्तर पे तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पे अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी, तो पानी के आपूर्ति के लिए

0: हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है और जलकल विभाग जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी शेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला बहुत बड़ा चौराहा हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई शेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते हैं कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए
1: बिल्कुल,
0: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो उसके में आपका क्या कहना है?
0: देखिए, इसमें 2 चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है
1: बिल्कुल,
0: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें, फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें, सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद, शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो

0: आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
0: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉड्यूल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
1: करेक्ट।
0: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं, कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको AC कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं, और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
1: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ। साझा किया। और सबसे अच्छी बात, आपने जो एक गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था। और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
0: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें। आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर्स
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं, और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है, और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के 4 लोगों के टॉपिक पे 4 लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
9: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
9: कुछ नया है,
1: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
9: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
1: जी
9: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
1: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में, हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
10: थैंक यू सो मच आरजे आनंद
1: जी।
10: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में,
1: जिसका नाम है सोच बदलो,
10: जिसका नाम है सोच बदलो।
1: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
11: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं, और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
1: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
9: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और 4 लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। 4 लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
1: करेक्ट?
9: वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं?
1: करेक्ट,
9: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
1: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
9: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके बच्चा एडवाइस कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है, मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात ये है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
10: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
1: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
11: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे।

0: एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर, सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
0: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है, कुछ

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट होंगे। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलों का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ,
0: सुनो प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा

0: कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री

0: एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे, वो भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपनी बेमिसाल सुंदरता, मनमोहक मुस्कान और बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता था। तो चलिए, इतनी जानकारियों के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कलाकार के बारे में बातें हो रही है। तो आइए, आप सभी के लिए पेश है ये गीत। गीत सुनकर गेस कीजिए हमारे आज के इस कलाकार को।

0: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है भाई, पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है, और जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष है। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
0: हाँ
1: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ, फाइनली तुम आज हो गए।
0: गाइस मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल नहीं हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है, क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं होंगी, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, स्टोरी लगा लगा के फेमस
1: है। हर के काम से लेकर ऑफिस तक हर
0: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है, और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
2: हाउ आर यू आरजे आनंद?
0: मैं बहुत ही
2: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
0: हाँ, महिला मंच। मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का, गाइस डोंट माइंड, अभी जाके खाना खाऊंगा। और जो हमारी गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच, ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
3: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके, और जब बात होती है महिलाओं की तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है।
0: अरे वाह, क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है, क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
3: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल छजलैट, मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
0: तो कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं?
3: रुचि मदान, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
3: हाँ, प्रिंसिपल आरएसएम पब्लिक स्कूल छजलैट।
0: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
3: मैं बस कहते ना महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं। और शक्ति क्या है? हम ही, धन भी हम है, विद्या भी हम है,
0: सही बात,
3: सब
0: है,
3: सब कुछ हम।
0: मुझे लगता है अगर देखा जाए ना तो हमारे जो आसपास की चीजें हैं ना वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है। धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली की देवी सर्वनाश करने वाली है,
1: अन्न की देवी अन्नपूर्णा।
0: हाँ, तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है, तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
3: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
3: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
0: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
3: ये तो शक्ति है कि आप उसको उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बड़ी बात में चलाओ।
0: क्या बात है, चलिए ये तो बात, ये बात की बातें, जोक सपाट है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं, और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये, और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि वो उनको भी ये चीज आएगी वो भी शुरुआत करें?
3: देखिए, आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है, तो आज की महिला तो नहीं है।
0: करेक्ट,
3: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियाँ थीं तब की बात है ये, कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
3: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं। घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है. लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था. वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी. उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए.
0: करेक्ट, बिल्कुल. तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है. क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही है मैम. लेकिन मुझे लगता है कि हर नारी करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन आज का समय भी ऐसा नहीं है. लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे. मतलब ऐसा भी
1: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
3: है. अभी भी मैं ये नहीं कह रही, अभी भी वो फैमिलीज ऐसी हैं, लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार हैं, इन्हें ही आपको आगे ले जाना है, मेंटेन करना है. लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
3: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं.
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी, आप जो कर रही है ना, ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज. लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना.
3: फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बना रहा है.
0: आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है. आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर. आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल्स देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है. तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी.
3: बिल्कुल. और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें. उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए. पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी. आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी. अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है.
0: बिल्कुल सही कहा,
3: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की. लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं. उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा. ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है.
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है.
3: हाँ जी,
0: करेक्ट. बहुत अच्छा बोला आपने. और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने भी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है.
0: करेक्ट.
2: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए. कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए. उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी. और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा.
0: वो भी बात बिल्कुल सही कही है दोस्तों. बिल्कुल देखिए, एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. जब तक हम चीज़ों को सपोर्टिव नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना. जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ. भाई कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई. अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा. शैली जी, रीना कई बार होते हैं ना, हमने खड़े खड़े जोमैटो ये वो जो भी हम करते हैं उसमें भी हमें गारंटी नहीं है कि कितना शुद्ध खाना मिल रहा है.
1: ये बात
3: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि हाँ. सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती
1: हैं. हाँ, वही
3: आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो, हर जगह शेफ है. शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
1: पुरुष
3: मिलेंगे नहीं.
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
3: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है.
0: हाँ.
3: ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है.
2: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है कुकिंग. यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही.
0: करेक्ट.
3: तो बिल्कुल सही बात है. आई नो,
1: वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने.
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें.
3: नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग करें.
0: हाँ.
3: लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहली थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए. मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें. या देखिए, जेंट्स के बस की बात नहीं है. जितना एक लेडी संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ। बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी।
1: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है। तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि अगर घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चलना है। इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए, सपोर्ट करिए आप महिलाओं को।
3: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे,
1: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए।
3: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं, बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
0: छोटा परिवार सुखी परिवार,
1: लेकिन खर्चा या जो
3: इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है, आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: उनको आदत में डालिए,
0: छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
3: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
1: नहीं, क्योंकि घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
3: 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
3: सब एक्टिव हो रहे हैं। आजकल के बॉयज बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है, लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है, तो वो जो नहीं वाला शब्द है नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।
0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइज अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी और पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं, कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली, जिस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली, अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली, खाने पीने की, मर्दों को भी आना चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहां से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
3: उन्हें, तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट,
3: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाया।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के बोलूंगा, रिसेंटली ना एक लेडीज हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उनके गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज, उनकी गवर्नमेंट टीचर है, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर हैं, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तुम यहीं घर में रहो, तुम्हारी आवाज़ यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पर खाना वाना बनाओ तुम्हारे लिए यही सफिशियंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं, शी इज वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती है। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
3: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी,
0: लेकिन कभी
2: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट करें।
0: जनरेट तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
3: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइड कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
3: क्योंकि साँच को आज क्या,
0: सही
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
3: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं आपको चार लोग इन्वाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात है। चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इन्वाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, पूरा परिवार की भी पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारे घर की नारियां कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी तो वो नहीं चला पाएंगी, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
3: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी। जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो एक फ्रूट से करो,

0: चाहे आप ये नहीं है कि रोज आप एप्पल ही खाओ, बनाना खा लो, किसी दिन गुआवा खा लो, मैंगो खा लो, सीजनली फ्रूट्स, फ्रूट्स फ्रूट्स पे अपने जो भी चीजें अपने उनको हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम, विटामिन D3 वुमेन्स का, विटामिन B12 बहुत कम होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि वो खाने को ना बिल्कुल साइड कर देती हैं। तो अपने खाने का सबसे पहले ध्यान रखें, टाइम से नाश्ता, टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं। और दूसरी बात, अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, नेगेटिविटी अपने पास से हटाने की कोशिश करें।
1: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइस अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
2: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़कियों को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो शिक्षित है, स्वस्थ है, तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
1: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
3: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
1: बहुत ही
0: बढ़िया,
1: बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है, आर यू रेडी गाइस? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइस महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को बोलना है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइस।
4: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
1: आपको भी बोलना है, फिर से बोलना है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
4: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
1: सफेद बालों की ऐसी की तैसी,
3: सफेद बालों की,
0: सफेद बालों,
2: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
0: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो
1: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, आपके बाल ही चले जाएं।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
0: रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
1: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी, फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
4: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो,
1: बाय बाय
4: बाय।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत। ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो हेलो फरमाइश, जहां बातें होती हैं, दिलों को जोड़ते हैं, रिश्तों के एहसास और बजते हैं आपके मनपसंद के गीत यहाँ पर।

0: तो दोस्तों, अगर आप भी किसी अपने स्पेशल को कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं या खुद के लिए भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाय, क्या हाल चाल है आपकी? हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। हम बहुत बढ़िया हैं एंड आई होप आप भी अच्छी ही होंगी। और इस चिलचिलाती गर्मी में क्या कर रहे हैं आप लोग?
1: कुछ नहीं, बस बैठे थे, आपका इंतजार कर रहे थे।
0: ओके, और फाइनली वो इंतजार कंप्लीट हो गया है?
1: हाँ जी।
0: ओके, और बताइएगा कैसे हैं फैमिली में सब आपके यहाँ पर? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, अच्छी बात है, गर्मी में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है और गर्मी का लुफ्त भी उठाइए। जी,
1: आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ, मेरे परिवार में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और कार्यक्रम को वो भी सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स एंड स्टूडियो में भी ऑल गुड, सब लोग बढ़िया हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं।
1: जी, कितनी खुशी होती होगी ना जब आपको सुनते होंगे, आपकी फैमिली वाले हैं ना?
0: हाँ, बहुत खुश होते हैं, मम्मा पापा ब्रदर सब लोग हैप्पी होते हैं और हमारे जो रिलेटिव हैं वो भी सुनते हैं।
1: बहुत खुशी होती होगी।
0: हाँ
1: जो
0: जी,
1: अपने को सुनते हैं ना किसी उससे रेडियो पे, और फिर रेडियो तो इतनी अच्छी चीज है यार कि हमको भी इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं इसके द्वारा।
0: तो आप बताइएगा, अपना नाम तो बताया नहीं है आपने, बातें हमसे कर रहे हो आप? हाँ
1: जी, मैं रुकैया फातिमा बात कर रही हूँ।
0: रुकैया फातिमा जी हमारे साथ कनेक्ट हुई है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप बताइए डियर?
1: जी, मैं अभी कानपुर जिला मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: ओके, नाइस। अभी क्या कर रहे हैं आप, मतलब स्टडी करते हैं या आप अभी यू नो घर पे ही रहते हैं?
1: नहीं जी, घर पर ही रहते हैं अभी तो हम।
0: अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है आपकी?
1: जी जी
0: ओके, एंड फिर क्या करते हैं, दीदी के साथ हेल्प कराते हो काम में या फिर बस?
1: हाँ जी, थोड़ा अभी ज्यादा तो नहीं आता है, खैर जितना आता है उतने में करा देते हैं थोड़ी हेल्प।
0: हाँ, अच्छी बात है, करानी भी चाहिए। जब मिलकर सब लोग काम करते हैं ना तो काम इजीली हो जाते हैं और किसी पर प्रेशर भी नहीं होता है कि एक ही के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं।
1: और फिर आपका शो बजता रहता है ना 3 बजे के, 3 बजे से पहले ही वैसे तो शुरू कर देते हैं
0: जी, ओके, वेरी गुड। आप बताओ क्या सुनूंगी आज, आप क्या डिसाइड किया है कि आज कॉल लगेगा तो मैं ये वाला गाना सुनूंगी, कौन सा है वो गाना? हाँ
1: आदि, आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ स्पेशली मेरी दोस्त दरक्षा फातिमा के लिए। सॉन्ग के नेम है दी, मेरी जिंदगी है तू।
0: ओहो हो, क्या बात है भाई, दरक्षा तो सुनकर झूम रही होगी आपकी बातें। हाँ
1: हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल राइट, सही कहा आपने।
1: उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी दोस्त दक्षा फातिमा की भी कॉल लगे और मैं भी सुनूं उनकी कॉल।
0: हाँ, ऑफ कोर्स लगेगी, आपने बोल दिया है ना, अब तो शायद लग जाएगी, अब वो और भी जल्दी कोशिश करेंगे कॉल लगाने की।
1: जी जी, वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उनकी कॉल जल्दी ही लग जाए।
0: आप बताओ और किसी का नाम लेना चाहते हो आप?
1: हाँ जी, मेरी सिस्टर है
0: ओके, चलिए प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: वेलकम दी,
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा, हमें तो विश्वास है एंड आप भी खुद पर बिलीव रखिए और हमें कॉल लगाइए। नंबर है 9837786896। इस बेहतरीन ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ इस पहले सी गाने के इस पर।

हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2 से, एंड जुबिन नौटियाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों, इस समय ना बस हम एक ही को यही बात बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है तो वो है फ्रिज, पंखा एंड एसी क्योंकि इतनी गर्मी है। और जब हम कभी मतलब बाहर से अंदर आते हैं, लाइक घर में एंटर करते हैं, तभी हम पंखे की तरफ नज़रें हमारी जाती हैं, एसी की तरफ जाती हैं, कूलर की तरफ हमारी नज़रें जाती हैं। और दिल करता है कि ठंडा ठंडा पानी पिया जाए ताकि थोड़ी सी राहत मिले। दोस्तों, इतनी कड़ाकेदार गर्मी है

0: कि धूप ने आज फिर कमाल कर दिया, चेहरे को पूरा लाल कर दिया। हम तो निकले थे मुस्कुराते हुए, गर्मी ने आते ही बेहाल कर दिया। है ना दोस्तों, ऐसे ही होते हैं ना, जब घर से बाहर निकलते हैं तो बन सवर के ऐसे जाते हैं कि बस पूछिए मत, और जब उधर से वापस आते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो हम ही हैं। इसीलिए कहते हैं कि गर्मी में बाहर जाने से बचिए, घर पर ही रहिए, और आप FM मुरादाबाद 89.6 को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर आपकी फेवरेट ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, 2 घंटे आपकी फरमाइशी शो चल रहा है जी हाँ, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने मनपसंद के गीत सुन सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन कनेक्ट हुई है हमारे साथ। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? निखत फातिमा जी हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वहाँ पर सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं। आई एम हैप्पी, आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और जब अपनी प्यारी प्यारी हाँ जब इतनी प्यारी प्यारी सखियों से बात हो जाती है तो और अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू, बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी बहुत तसव्वुर का आलम, बहुत दिलियाश की।
0: ओए होए होए, क्या बात है भाई, इतना सोना गाना किसके लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आप हो ना,
0: हाँ
1: आपके लिए।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी, स्पेशली आपके लिए। ओके, और इस गर्मी में कैसे राहत पा रही हैं, खुद को कैसे सुरक्षित रख रही हैं आप, जरा बताइएगा हमें।
1: हाँ जी, हम नींबू पानी का प्रयोग कर रहे हैं और गर्मी से धूप में बहुत कम ही निकल रही हूँ मैं तो।
0: अच्छा, और सुबह ही आप बता रही थी मुझे कि हम अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, गर्मी से तो बेहतर है कि जल्दी ही अपने काम कंप्लीट कर लें ताकि गर्मी से राहत मिल जाए।
1: हाँ जी, धूप भी तो ज्यादा ही तेज निकल रही है नेक्स्ट टाइम।
0: हाँ बिल्कुल, 9 बजे काफी गर्मी हो जाती है।
1: हाँ जी,
0: और ये खूबसूरत से गीत आपको सुनवाते हैं, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, अपना अच्छे से ध्यान
1: ओके।
0: रखिएगा।
1: हाँ जी, आप भी।
0: ओके, थैंक यू, बाय।
1: ओके, बाय बाय जी।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सखी आरजे खुशी। और दोस्तों, यहाँ पर समय की बात करें तो वक्त हुआ है 3:29 सॉरी। एंड हमारे साथ हमारे एक और कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना,

उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका सर? आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा सर। वसीम अकरम जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं?

Absolutely. जी बताइएगा, सब ठीक है आपके यहाँ पर? जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी? कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज? सर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, शायद नेटवर्क इशू था इसलिए। एंड दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कॉल हमें कर रहे हैं तो अपने आसपास बैकग्राउंड ऐसी जगह पर बात कीजिएगा जहाँ बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ ना आए, थोड़ा शांत वाला वातावरण हो ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से रेडियो पर आए और सुनने वालों को भी अच्छा लगे एंड मुझे भी समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क में भी आ जाएगा, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे अगेन कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमें कॉल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइएगा और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से आए, क्योंकि आवाज़ें रिपीटेड होती है ना पीछे से, बैकग्राउंड से, तो तभी समझ में नहीं आती हैं आपकी आवाज़ें। इसीलिए दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखो, बाकी आप मुस्कुराते रहो और खूबसूरत सा गाना इन्जॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया किशोर कुमार साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी सिलसिला। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब पता है दोस्तों, गर्मी इतनी है ना चाय अच्छी लगती है ना कॉफ़ी भा रही है। इस गर्मी में तो बस ठंडी लस्सी ही दिल को सुकून दिला रही है। क्या भी इस गर्मी में लस्सी का लुत्फ उठाते हैं, और ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके। मैम, क्या नाम है आपका?
1: मैम रामपुर से शबनम जी बात कर रही
0: हूँ। शबनम जी हमारे साथ रामपुर से कनेक्ट हुई हैं। बताइएगा कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। आप
0: जी बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, इस गर्मी में लस्सी वगैरह पी रहे हैं आप या नहीं?
1: मैम बिल्कुल।
0: अच्छा, अच्छी बात है, गर्मियों में ठंडी चीज़ों का लुत्फ़ उठाना चाहिए।
1: गर्मी बहुत हो रही है, कल से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी।
0: हाँ, कल से कुछ ज़्यादा गर्मी है, राइट। और लाइट भी बड़ा परेशान करती है, बार बार जाती है।
1: बार बार जाती है, ये बात तो।
0: हाँ, और अच्छा, लाइट को भी गर्मी लगती होगी ना बेचारी को, वो भी उसको भी तो रेस्ट चाहिए होता है ना। देखिए, सब आराम करते हैं, उसको भी तो, उसका भी तो आराम का वक्त होता है। ये तो हमारा खैर हंसी मजाक जोक्स था। आप ये बताइएगा शबनम जी, इस समय आप क्या कर रही हैं?
1: इस टाइम तो दीदी मैं बस वो तैयार कर रही
0: थी। अरे वाह, अच्छी बात है मैम। आप बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: आज गाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी लाइव जी से।
0: हाँ बिल्कुल, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप?
1: अगर वो सुन रही हैं तो वो जिस दिन भी किसी मैम से मिलने आए ना FM मुरादाबाद,
0: यस,
1: तो मुझे कॉल करना
0: है। ओके।
1: कॉल करने के लिए मेरा नंबर किसी दिन से ले रहा हूँ।
0: अच्छा ठीक है, इतना सा मैसेज आपने पहुँचा दिया है।
1: आप उनको
0: नंबर दे देना। ओके मैम, श्योर। तो ये बताइएगा, फरमाइश नहीं बताइए आपने, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहती हैं?
1: फरमाइश रहेगी
0: आपकी तरफ से, आप ठीक है, हम बढ़िया सा गाना प्ले करते हैं आपके लिए। थैंक यू कॉल करने के लिए हमें।
1: कुछ नाम है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: और ये मेरा बेटा है।
0: ओके, तो चलिए सभी के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम।
1: ओके बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन, हमने एक ट्रैक सेलेक्ट किया है फ्रॉम द मूवी गदर 2, और बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। तो इस गाने को हम सब एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे फिर से कनेक्ट होते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 98 378 96 896।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है। हेलो फरमाइश। देखिए, लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ एवरीवन कि आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल लगा सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी ट्रैक आप सुन सकते हैं और चाहे तो आप किसी दोस्त को डेडिकेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को डेडिकेट कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को भी डेडिकेट कर सकते हैं। इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। ये चांस आपको मिला है तो आप जल्दी से हमें कॉल लगाइए। और अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक इंजॉय किया फ्रॉम द मूवी गदर 2 से, और इस खूबसूरत से गीत को गाया था नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साथ में साहिल अख्तर और मिथुन जी की आवाज़ में। ब्यूटीफुल ट्रैक आपने इंजॉय किया। और अभी कनेक्ट होते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या उनका नाम है, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। यस, क्या नाम है आपका? मुस्कान बात कर रहे हैं आजाद नगर करूला से। जी बताइए मुस्कान, क्या करती हैं आप?
1: हम कुछ नहीं करते हैं, इस टाइम तो घर ही पे रहते हैं।
0: अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है आपकी?
1: पढ़ाई तो हमारी कंप्लीट हो गई, इसलिए हाई स्कूल करा है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं मुस्कान उसके अलावा? अभी जैसे घर पर रहते हैं तो घर पर कुछ वर्क करते हैं आप?
1: सिलाई करते हैं ना।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं। ओके, तो किस तरह की ड्रेसेस आप बनाती हैं, किस तरह के कपड़े आप सिलती हैं? अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नए नए डिजाइन के ड्रेसेस सिल लेती हैं तो फिर आपके पास बहुत सारी सिलाई आती होंगी ना? काफी आसपास के लोग भी आपकी आपसे ड्रेस सिलवाने के लिए आते होंगे कि प्लीज हमारा भी सिल दीजिएगा ड्रेस। ओके, तो क्या प्राइस लेते हैं आप?
1: हम 120 रुपए।
0: अच्छा, सिंपल या फिर डिजाइन वाला? डिजाइन वाले के तो ज्यादा होंगे ना, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। ओके ओके, तो बताइएगा मुस्कान, आप कब से रेडियो सुन रहे हो, कितना वक्त हो गया है आपको?
1: हमें लगभग एक साल होने वाला है।
0: अच्छा, 1 ईयर होने वाला है, तो बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमारी फरमाइश है
0: वो हो, ये गाना क्यों सुनना चाहती है आप?
1: अच्छा
0: लगता है। ओके, डांस करना आता है आपको?
1: डांस करना नहीं आता।
0: आता है पर शर्मा रहे हैं आप, बता नहीं रहे हैं हमें। हाँ,
1: घर में मिलते कर लेते हैं, बहने वगैरह।
0: ओके, कितनी बहने हैं आप?
1: हम दो बहने।
0: अच्छा, दो सिस्टर हैं। ओके, तो चलिए प्यारा सा ट्रैक हम प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। इंजॉय कीजिएगा आप अपनी पसंद का प्यारा सा गाना। ओके,
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम मुस्कान। तो चलिए मुस्कान की पसंद के ट्रैक सुनते हैं एवरीवन, और आप भी हमें कॉल लगाओ बिना किसी देरी के। देखिए, कॉल लगाने में ना कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ना ही कोई पैसे खर्च हो रहा है। फटाफट से कॉल लगाओ, कंजूसी मत करो। और अगर कार में बैठे हैं ना तो हम आपसे कहेंगे म्यूजिक जो वॉल्यूम है ना थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्योंकि जो ये ट्रैक है ना बहुत ही प्यारा है, आपकी इस दोपहर को ना और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। इस प्यारे से गाने को एंजॉय कीजिएगा और गर्मी की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मुस्कुराओ, अपने माइंड को कूल बनाओ इस प्यारे से गाने के साथ। ठीक है, मैं नोट कराती हूँ अभी।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया ऐतराज़ मूवी से, और खूबसूरत सा गाना उदित नारायण जी, श्रेय घोषाल, साथ में अलका यानी जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, आदाब है मैम।
0: जी आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं खान आलम बोल रहा हूँ मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा सर, आपका काम कैसा चल रहा है? वह
1: मैम काम इस समय सही है, अल्लाह का शुक्र है, पर थोड़ी गर्मी है जिससे थोड़ी दिक्कत हो रही है।
0: जी गर्मी से तो सभी परेशान हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बस इस गर्मी में सब अपना ख्याल रखें, हम तो यही कहते हैं। जी तो बताइएगा सर, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम फरमाइश हमारी मैडम ने की है, वो फोन लगा रही थी आप पेशेंट सर, तो वो लग नहीं पा रहा था,
0: अच्छा
1: तो उन्होंने मुझसे कॉल करी, उन्होंने कहा आप थोड़ा ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। तो मैंने कहा अगर मिल गया नंबर तो मैं जरूर सुनवा दीजिएगा, तो मैंने आपको कॉल लगा दिया।
0: ओके मतलब ऐसा क्या हुआ मैम, कॉल लगा रहे हैं तो नहीं लगा, आपने लगाया तो लग गया? हाँ जी
1: मैम मैं आपको लगाता रहता हूँ, मैं
0: अच्छा
1: आपका बहुत पुराना लिसनर हूँ।
0: हाँ, ये तो हमें मालूम है कि
1: हाँ
0: आप हमारे पुराने लिसनर हैं।
1: मुझे मैम इसकी ट्रिक पता है कि मुझे किस वक्त किस समय पर कब नंबर कैसे मिलाना चाहिए, तो मुझे मालूम है थोड़ा सा इसका नियम आपके यहाँ का।
0: हाँ जी, हाँ जी, मैम को नहीं मालूम है।
1: ना अभी वो नहीं है, उन्हें पर उन्हें पता नहीं है, वो तो वो घर के काम में ज्यादा रहती है ना, तो उन्होंने तो लगाती रहती है, तो उसका जैसे मिल नहीं पा रहा, मुझे पता है किस वक्त में ट्राई करना है।
0: जी बिल्कुल, आप मैम को भी बताइएगा, हम भी चाहते हैं कि वो भी हमें कॉल करें, हम भी उनसे बातचीत करें।
1: ठीक है, तो मैं किसी दिन मैम घर से ही कॉल करवा दूंगा
0: जी
1: आपको,
0: जी
1: आपसे
0: बिल्कुल
1: बात
0: सर,
1: करेंगे।
0: बिल्कुल करवाइएगा। आप ही आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे सर, मैम की पसंद का?
1: तो वो गीत भी उन्होंने मुझसे बोली कि मैं तुम्हें सुनवाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा सुनवा दो भाई, हम भी सुन लेंगे, हमारे एफएम के कितने मित्र होता है वो भी सुन लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स बताइएगा।
1: तो उन्होंने फरमाइश की है लता मंगेशकर जी की, खूबसूरत आवाज में सॉन्ग है, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही
0: तुम ही
1: देवता
0: देवता
1: हो।
0: हो, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है ये, सुनवाते हैं आपको। कॉल करने के लिए
1: ये ओल्ड
0: शुक्रिया आपका
1: सॉन्ग
0: सर।
1: है मैम, ये ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग है, ये बहुत खूबसूरत।
0: हाँ जी बहुत खूबसूरत है, लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं और गाया भी बहुत ही खूबसूरती से है, तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा
1: मैम
0: गीत। कॉल करने के लिए
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी खानदान से, और लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिए कि आपको भी कॉल जल्दी से लग जाए, एंड ये प्यारा से गाना एंजॉय करूँ। मैं लौट कर आती हूँ बस अभी।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: टायर लो, सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और खूबसूरत गीतों का आप आनंद ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्यूटीफुल सफ़र में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले फरमाइशकर्ता जी के साथ, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, क्या उनकी फरमाइश है, जानते हैं उन्हीं से। अगर साथियों आप भी चाहते हैं ना हमें कॉल लगाना तो लगा सकते हैं, इजीली आपका कॉल लग जाएगा। हेलो फरमाइश
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका?
1: मैम शिवा लोहर, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी क्या नाम बताया आपने? से
1: शिवा, शिवा
0: शिवा बात कर रहे हैं एमपी से। बताइए शिवा, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, बस आपने आज बहुत मेहनत करवा दी, 3 बजे से अब जाके गाने लगा हूँ मैं।
0: अच्छा, 3 बजे से आप ट्राई कर रहे हैं और अब जाकर आपका कॉल लगा है, बताइएगा। सबसे पहले बताइए कैसे हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है मैम, मेरा 2 बार कॉल कट चुका मैम, एक बार आपने उठाया नहीं, एक बार आपने उठा के काट दिया।
0: नहीं, मैंने नहीं काटे, सो हम पे ब्लेम मत लगाइए, हम ऐसा कॉल क्यों काटेंगे। एक्चुअली ना कभी कभी ऑटोमेटिकली ना डिस्कनेक्ट हो जाता है कॉल, हम किसी का कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। ओके हाँ जी,
1: नहीं मैम मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ।
0: तो बताइएगा आप शिवा, एमपी का मौसम कैसा है, बताइएगा।
1: मैम ये समझिए, अभी तो ये समझ लीजिए आप गिर रही है यहाँ पे।
0: ओके, बहुत ज्यादा गर्मी है, समझ गए हम। बताइएगा इस गर्मी में आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जो आपको राहत दे?
1: मैम एक मूवी है रोटी कपड़ा मकान,
0: हाँ जी,
1: और उसमें एक गाना है महंगाई मार गई।
0: अच्छा, और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल जी, महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, तो यही ही गाना अब जुबान पे आ रहे हैं। हाँ
1: नहीं मैम, बात ये है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और महंगाई है।
0: अच्छा जी
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत से गीत और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप कॉल लगाना ना भूलिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।
2: कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

0: जीवन दे बस तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। मैं आपके साथ आपकी खुशी और समय हुआ है अभी यहाँ पर स्टूडियो की घड़ी में 4:21। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: नमस्ते जी।
0: जी, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा।
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार से, वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर सितारे जी हमारे साथ जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट वैशाली से। बताइएगा कैसे हैं आप, वैशाली बिहार से कनेक्ट हुए हैं। इतने लॉन्ग समय के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ थे आप बताइएगा हमें सब।
1: मैं दूसरे श्रोता को मौका देता हूँ कि सब श्रोता बात कर ले बाहरी से।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच, आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि आप और श्रोताओं को भी और दोस्तों को भी मौका देते हैं ताकि वो भी कार्यक्रम में इजीली कॉल लगा सक पाएं, राइट
1: जी।
0: तो बताइएगा सर,
1: बहुत गर्मी पड़ रही है, सब लोग को पानी पीना चाहिए, प्रकृति का मुकाबला करना चाहिए। आप साल तो गर्मी ऐसा ही है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस गर्मी में पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, उनको भी नियमित रूप से पानी देना चाहिए सुबह शाम। जी
1: अच्छा, सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका।
0: जी बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है। सो
1: तेरे लैला मजनू का, तेरे दर पर आया हूँ,
0: तेरे दर पर आया हूँ। ओके चलिए, ये गीत आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी बताइए।
1: गजराज लोधिया, विजय कुमार पांडे है, अविनाश भाई है, देवनाथ भाई है, शारदा बाबू है और आप लोग
0: हो। ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद जी,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं सर की पसंद का और हम लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाती रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाती रहिए।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और मैं अब अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में अखिल जी भी हैं। कैसे हाल चाल है अखिल सर? वेलकम है आपका।
1: बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हाल चाल है। और आप बताइए, आप तो एसी में बैठी हुई हैं, आपके हालचाल कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और एसी में बैठने वालों का जो हाल होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तब बेहाल हो जाते हैं।
1: आज के लिसनर्स आपके साथ इतने सारे कनेक्ट हुए,
0: हाँ जी,
1: कोई एक किसी बताइए किसी के बारे में कि कौन अच्छा लगा, कैसे रहे?
0: मैं अगर लिसनर की अपनी बात करूँ तो सारे ही लिसनर ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं एक को नहीं चुन सकती, सभी बहुत प्यारे हैं मेरे लिए।
1: क्या बात, आज कहीं स्पेशल, कहीं दूर दराज से, कहीं बहुत ही दूर दराज से कोई कॉल?
0: हाँ, हमारे साथ एमपी से हमारे एक लिसनर जुड़े थे और एक बिहार से कनेक्ट हुए थे डॉक्टर सितारे जी। एंड एक सर का कॉल लगा था गुजरात से, लेकिन उनका आई डोंट नो कैसे डिस्कनेक्ट हो गया है कॉल। और अभी तो हमारे साथ जुड़ी हैं एक हमारी ब्यूटीफुल से लिसनर, क्या नाम है उनका जरा बताइएगा आप।
1: हेलो फरमाइश, आपका नाम और आप कहाँ से हैं?
2: मैं डायरेक्टर फातिमा बोल रही हूँ, जिला मुरादाबाद, ग्राम गोदी।
1: फातिमा जी, कैसी हैं आप, क्या करती हैं आप?
2: जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं घर का काम करती हूँ पति के साथ।
1: बहुत बढ़िया फातिमा जी। आज फातिमा जी आवाज कम आ रही है आपकी, कुछ लंच वंच कम हुआ है क्या आज?
2: नहीं तो सर, लंच तो अच्छा गया।
1: और क्या सुनना चाहती हैं आप?
2: सर, सॉन्ग है तेरे नाल प्यार हो गया, इस पे के लिए अपने दोस्त

0: एक फातिमा जी दूसरी फातिमा जी के लिए कुछ गुनगुनाना चाहती हैं,
1: ये ट्रैक डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: डेडिकेट आप कुछ गा के भी सुना दीजिए फातिमा जी।
2: गाना नहीं
0: आता। अरे कोई नहीं, ऐसा गाना तो किसी को नहीं आता गाना, मगर जब वो गाना चाहता है तो गा ही लेता है ना।
1: बिल्कुल, गुनगुनाती तो बहुत है आप, लेकिन अभी शर्मा रही हैं। हाँ,
0: कोई ऐसा गाना गुनगुना दीजिए जो आप अक्सर गुनगुनाती रहती हैं, याद आ जाता है आपको।
1: ये बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, गुनगुनाइए। ओहो, इतने धीरे धीरे गुनगुनाएंगी आप?
0: ऐसे मत गुनगुनाइए कि आप ही सुने। सबने कानों पे ना, रेडियो पे सबने अपने कान लगा
1: लगा के रखे हुए हैं।
0: कोई डैशबोर्ड पे लगा रहा है, भैया कहाँ आवाज कहाँ चली गई आज मेरे उसकी स्पीकर की। हाँ थोड़ा सा तेज,
1: थोड़ा सा लाउड गाइएगा,
0: मिक्का सिंह की तरह।
1: बिल्कुल जी, आपको तो है एफएम मुरादाबाद से प्यार, नो डाउट। आप हमारी इतनी प्यारी लिसनर हैं और हर वीक कॉल लगाती हैं, पर लग नहीं पाते हैं, ये बात अलग है। और कुछ कहना चाहती हैं आप?
2: जी मैम, मेरी दोस्त ने बोला था ना, तो कहिया फातिमा के दरख्त की कोई जरूर लगे, तो इसलिए मैंने कॉल लगाई।
0: क्या बात है, ये वाला गाना गाना चाहिए था आपको। ये दोस्ती
1: हम नहीं तोड़ेंगे।
0: मेरी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना। क्या खूब कहा फातिमा जी, आप तो शायर बन गई, आप तो शायर बन गई, बताइए एफएम पे आते ही।
2: अल्लाह से दुआ है, इंशाल्लाह हमारी
1: दोस्ती हमेशा ही रहे। बिल्कुल, हम भी यही दुआएं करते हैं कि आपकी दोस्ती हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे
0: और ऐसे ही गुनगुनाते रहे आप।
2: किसी की नजर भी ना।
0: कोई अच्छा, कोई एक दोस्ती का किस्सा सुना दीजिए फटाफट, जो आप दोनों जो साथ में थे और एक किस्सा आपके साथ घटा
1: जो आपको अभी भी याद है और बहुत हंसी आती
0: याद है, जैसे फातिमा जी का कुछ, कोई ऐसा किस्सा फटाफट बताइए।
2: फिलहाल याद नहीं आ रहा।
1: अरे वो आपके घर आती हैं, आप उनके घर जाती हैं, तो
0: कभी खाने में मिर्ची खिला दी हो, कभी कहीं धक्का दे।
2: मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, मुझे आपने हाथ से खिलाया है, उन्होंने मगर मिर्ची नहीं खिलाई है।
0: दोस्तों में तो सब कुछ चलता है, जायज होता है।
2: सर अभी अभी नहीं खिलाई है ना फिलहाल,
0: वैसे
2: वो खाना तो मुझे बहुत अच्छे से खिलाती
0: है। अब की बार आए तो खिला देना। पक्का पक्का,
1: चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए डियर।
2: जी मैम, मेरी और सिस्टर है।
1: हाँ हाँ बताइए।
2: मैं प्यारी सी खुशी मैम है और मेरी सिस्टर है राबिया, नाजिया, अफरोज अप्पी और आसिया अप्पी, ठीक सभी के साथ।
1: ओके सुनवाते हैं गाना, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू मैम,
1: मोस्ट वेलकम,
0: बाय। सारा थैंक यू मैम को दे दिया इन्होंने।
1: अच्छा अखिल सर, पता है आपको,
0: मगर अच्छा है, मतलब दोस्तों के लिए डेडिकेट, यही तो है, यही तो आपकी फरमाइश है, कम से कम अपने दोस्तों के लिए कोई तो फरमाइश करता है।
1: बिल्कुल, देखिए गर्मी का आलम कुछ ऐसा हो गया, गर्मी का आलम कुछ ऐसा हो गया, कूलर भी अब कह रहा है भाई थोड़ा आराम मुझे भी दे दो।
0: कूलर भी कह रहा है,
1: हाँ अब थोड़ा सा आराम मुझे भी दे दीजिए।
0: कूलर को आराम दे सकते हैं ना एसी को, और दो महीने काम पे लगाते हैं उन्हें अब भी आराम चाहिए तो फिर कैसे होगा काम।
1: हाँ बिल्कुल, अगर उनको आराम देंगे तो फिर हमारे नींद चैन सब उड़ जाएगा।
0: बिल्कुल सही बात कही।
1: हाँ जी, तो अभी दोस्तों ये हमारी जो बातचीत है चलती रहेगी, लेकिन एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए
1: और मुस्कुराते रहिए और ये प्यारा
0: गाड़ी चलाते रहिए,
1: गाड़ी चलाते रहिए, हौले हौले सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा। और जो आप अभी कार में म्यूजिक सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि गाना बहुत ही खूबसूरत है।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अखिल सर ये गाना गुनगुना रहे थे, तेरे नाल प्यार हो गया, तो हम उनसे मालूम करना चाहते हैं आपको किन से प्यार हो गया, जरा बताइए अखिल सर हमें भी।
1: मुझे ना इस समय सिर्फ दो ही चीजों से प्यार है।
0: कौन सी हैं वो दो चीजें जिनसे बेहद आपको प्यार है?
1: ठंडी ठंडी हवाएं फेंकती हैं।
0: ओके, कौन है जो ठंडी ठंडी हवाएं फेंकती हैं? बताइए हमें।
1: इसमें कूलर और एसी से प्यार हुआ रखा है।
0: हाँ, मुझे भी बहुत प्यार हो गया इनसे,
1: क्योंकि आसपास रहेंगे तब तक आपका प्यार जो है
0: सुकून मिल जाता है, और जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो जो सुकून है ना वो दूर हो जाता है हमसे। वैसे हमारे साथ कौन जुड़े हैं अभी अखिल सर, जरा उनसे बातचीत करते हैं।
1: जुड़े तो हैं हमसे एक, मगर उनकी आवाज जो है बड़ी, अभी पता करते हैं।
0: ओके,
1: हेलो फरमाइश।
0: तो अखिल सर मुझे एक बात बताइएगा आप।
1: बताइए।
0: हमारे पास एक लिसनर का कॉल आया और वो मुझे कहते हैं कि हेलो निखिल सर कैसे हैं। मैंने बोला निखिल सर कौन है, तो बोलते हैं जो आपके साथ आते हैं। तो मैंने बोला उनका नाम निखिल नहीं, उनका नाम अखिल है। कहती हैं कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने बोला थैंक यू, तो बोलते हैं कि हमारी उनसे बात हो जाएगी। मैंने बोला अभी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अभी थोड़ा सा बिजी हैं, और वो हमारे साथ MP से जुड़ी थी। अच्छा। ज्योति जी, हाँ जी,
1: ज्योति जी को मेरा नमस्कार।
0: और वो आपको कह रही थी कि हम अखिल सर को बहुत मिस करते हैं, तो फिर बोलती हैं, मैंने कहा नहीं नहीं अखिल नहीं है, निखिल नाम है उनका। तो वो हंसने लगी, कह रही मैम सही सही बताइए ना प्लीज। मैंने बोला नाम तो अखिल है लेकिन आपने प्यार से उनका नाम निखिल रख दिया है,
1: तो मेरा आज नया नामकरण हो गया है।
0: हाँ हाँ, मिठाई तो आपने खिलाई नहीं, आपका तो नामकरण हो गया।
1: ज्योति जी खिलाएंगी ना।
0: हाँ, फिर MP से वो लड्डू भिजवाएंगी, जलेबी पोहा MP का बहुत फेमस है ना, पॉपुलर। हाँ, है
1: मतलब हर जगह का एक अलग अलग टेस्ट है, मगर मजा आ जाता है समोसा।
0: हाँ, तो अभी बात करते हैं कौन जुड़े हैं हमारे साथ।
1: हेलो फरमाइश। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं
1: रामपुर से अयूब अली जी, कैसे हैं आप?
2: सब बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं?
1: क्या काम करते हैं अयूब जी?
2: हमारा काम वेल्डिंग का है।
1: वेल्डिंग, क्या वेल्डिंग कर रहे हैं आज?
2: बाहर देसी माल लगा है हमारा।
1: आपकी शादी हो गई है?
2: शादी अभी नहीं हुई है सर, अब होने वाली है थोड़े।
1: तो अभी आपकी वेल्डिंग होनी रह गई है फिर। क्या गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: आज गाना है बुखरा चांद का टुकड़ा मेरे नाम पर आपके प्यार।
1: बताइए साहब, क्या गाना चुना है आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर गाना चुना है। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
2: सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट।
1: सारे दोस्तों में से किसी खास दोस्त के भी नाम बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, जो घर से सुन रहे हैं सारे। सही है साहब, बहुत आपके लिए स्पेशल। क्या अंजलि, बहुत ही सुंदर, अंजलि जी के पास तक ये मैसेज पहुंचे। और अयूब साहब जो है बहुत ही बढ़िया गाना चूज किया है। अयूब जी आपकी और कोई, मतलब आपकी कोई और ऐसी कोई स्किल जो आप हमें सुनाना चाहें, या शायरी या कोई गाना? चलिए साहब, तो आप भी मेरी तरह बिल्कुल सीधे साधे इंसान हैं। ठीक है यू साहब, जरूर जरूर आपका ये संदेश पहुंचाते हैं और ये गाना सुनाते हैं। क्या फरमाइश
0: अखिल सर, आप मुझे बताइए, आपने बोला मैं भी सीधा साधा हूँ, सीधे साधे कहाँ हैं आप, इतनी बातें तो बतियाते हैं हमारे साथ, इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। इनके साथ जब कोई इंसान बैठता है ना, तो मैं रियली बता रही हूँ, कोई इंसान बोर नहीं हो सकता है, एक्चुअली वो हमेशा हैप्पी रहेगा। मैं ना कभी कभी गुमसुम से बैठ जाती हूँ, लेकिन जैसे ही अखिल सर एंटर करते हैं ऑफिस के अंदर, तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। ये तो
1: आपकी बात है, ये तो आपका बड़प्पन है।
0: नहीं सर, रियलिटी है ये। और दोस्तों अभी हम ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं, लौट कर आते हैं, तब तक अभी कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर हम आपको बताते हैं 9837896896।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू

0: वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, ये खूबसूरत गीत सुन रहे हैं आप अपनी पसंद के। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गब्बर सैन है जी। मैडम
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: मैं से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा, क्या करते हैं सर आप?
1: जी। मैडम मेरी चक्की है, गब्बर सैनी के नाम से मशहूर है।
0: अच्छा, आटा जिसमें पीसते हैं, मतलब गेहूँ जिसमें पीसते हैं ना, वही वाली चक्की। ओके
1: जी जी जी जी
0: जी, बताइएगा सर, आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: और समय से हमारे सामने एक फैक्ट्री है, उसमें चलता है रेडियो।
0: अच्छा, ओके। तो बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है आज?
1: फरमाइश का गाना है, आपकी दोस्ती कबूल मुझे दुश्मनी से डरता हूँ।
0: ओके, और ये गीत आप किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: मेरे एक दोस्त है मिस्टर राजीव चौहान, जिनकी फैक्ट्री है, उनके लिए सुनना चाहता हूँ
0: जी। तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
1: जी।
0: तो चलिए दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत सर की पसंद का सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए और आप भी हमें कॉल लगाइए, शायद आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत इंजॉय किया कुमार सानू जी की आवाज़ में। एंड अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, अपने नाम बताइएगा आप।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ,
0: जी
1: अकबरपुर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं हारून जी आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है दिव्य शक्ति।
0: हाँ जी, दिव्य शक्ति मूवी का कौन सा ट्रैक आपको सुनना है?
1: चलूंगा मैं आपके घर, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है इस पर।
0: हाँ जी, इधर भी सेम पिंच, बहुत ज़्यादा गर्मी है और लू भी चलती है दोपहर के समय में।
1: बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही।
0: हाँ जी सर, बाहर अगर आपको जाना भी है तो शाम के वक्त जाइएगा, जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए। और आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद सर। सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। तो श्रोताओं, अब हमारे जाने का भी समय हो गया है और आपसे मिलेंगे हम कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और यूं ही मुस्कुराते रहिए। FM मुरादाबाद 89.6 बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अपनों का विशेष कर ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। और ये प्यारा सा गीत आप सुनते जाइए। खुशी अब आपको कहती है बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और मुस्कुराने के साथ साथ अपना ध्यान भी अच्छे से रखिएगा।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात तो लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती। तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है,
1: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है।
0: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है और समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके हैं। शाम की इस प्यारी सी आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है दोस्तों। शानदार गानों के साथ दिलचस्प बातें और कुछ मजेदार किस्से और आप सभी की फरमाइश तो जो आप सभी मैसेज करते हैं ना, प्यारे प्यारे भाई, क्या ही कह सकते हैं। मतलब आप सभी के मैसेज पढ़कर ना ऐसा लगता है कि भाई पूरे दिन की जो थकान होती है ना, काम करके थोड़ी बहुत थकान हो जाती है, वो छू मंदर हो जाता है। सो आर्जेरीना आप सभी के साथ यानी कि 2 घंटे के लिए कनेक्ट हो गई है। ढेर सारी बातें करेंगे, आखिरकार देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यानी कि लोकल फॉर वोकल की भी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड की गलियों की तरफ भी बढ़ने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है और कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर पर बहुत ज्यादा छाई हुई है। सो आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि बातें दिल से करने वाले हैं जी आप सभी के साथ। फिलहाल अगला गाना भी बहुत प्यारा है।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
3: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
4: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
3: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी

ये आर्जुरीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:27 हो चुके हैं और देखिए ट्रैफिक की बात ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी हम ऑफिस से घर की तरफ निकलते हैं ना तो जल्दबाजी में ना हम इतने बिजी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। बस कुछ भी हो जाए हमें घर पहुंचना है, यानी कि टाइम से पहले ही हमें पहुंचना है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि देखिए शाम अपनी है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि आपको बॉस की डांट भी नहीं सुनने को मिलेगी। शाम अपनी है, आराम से आप घर जाइए, हौले हौले गाड़ी चलाइए। देखिए गाड़ी चलाते समय ना थोड़ा सा बस धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, हम धैर्य तो रख नहीं पाते। बस आगे देखा कि ट्रैफिक है भैया, है ना, तो हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते। अरे भैया आप तो गाड़ी के अंदर है, लेकिन जो बाहर है उनके कान के पर्दों के तो ज़रा फिक्र कर लीजिए, क्या होएगा उनके कान के पर्दों का इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता देती हूँ, काठ रोड और बुद्ध बाजार चौराहे की तरफ से, तहसील स्कूल चौराहे की तरफ से अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। साथ ही साथ हरथला पीएससी की तरफ से आप जा रहे हैं तो भैया शाम के समय यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जाम मिल सकता है। साथ ही साथ जैसे जैसे शाम होती है प्रकाश नगर चौराहे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ भी आपको जमकर ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। सो आपसे यही कहना चाहूँगी, आप कहीं भी ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896, ताकि उस रूट से जो भी आने वाले होते हैं वो ट्रैफिक जाम से बच सके। और आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। अक्सर अगर मैं बात करूँ बाइक स्कूटी, सो आपने हेलमेट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ फ़ोन को ना कुछ देर के लिए, जब तक आप घर नहीं पहुँचते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक के लिए फ़ोन को साइड में रख देना होता है। लेकिन नहीं, पापा की परियों को भी देख लो भैया, एक हाथ से हैंडल और दूसरी हाथ से फोन, बात करती चलेंगे, ऊपर से मैसेज भी करती रहती है। भाई कौन सी ट्रेन छूट रही है जो आप इतने मैसेज, मतलब टाइम टू टाइम ही करना है। वैसे घर पर रहेंगे तो नहीं, अभी नहीं करेंगे यार, थोड़ा सा वैल्यू अपना बना कर रखो, ये दिखाएंगे, ये थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे। लेकिन जब वही ट्रैफिक में होती है तो भाई टाइम टू टाइम मैसेज करना है, रिप्लाई देना है। अरे आपसे भी कह रहे हैं जनाब जी, हाँ जी, ब्लैक कलर की शर्ट में आप हैं और गाड़ी चला रहे हैं, होले होले और फोन साइड में रख दीजिए मेरी जान, अभी नहीं फोन चलाना है आपने, क्योंकि सामने देखिए और सीट बेल्ट हेलमेट जरूर लगा कर रखिए, क्योंकि आप साफ साफ कैमरे की निगरानी में हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें कोई नहीं देख रहा है, खाकी कलर में जो मामा खड़े हैं वो भी दिख नहीं रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं दिख पा रहे, तो इसीलिए ना हम कोई नहीं देख रहा, बस ऐसे ही चले जाते हैं। अरे आप सीसी कैमरे की निगरानी में हो, कब आपके बैंक बैलेंस से, यानी कि जो आपके अकाउंट में पैसे हैं ना, कब उठ जाएंगे, आपका कब बटुआ खाली हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। और टेम्परेचर के वेदर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा गाना। अगर सफ़र में एक के साथ दो हो तो सफ़र यूं ही कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट रहेंगे और हमारा सामुदायिक रेडियो सुनते रहेंगे ना आप, तो बातों के साथ साथ गाने के जो तड़के लगते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सो गाना सुनिए और यूं ही अपने सफ़र में निकल चलिए।

0: अशांतिन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। आप सुन रहे हैं अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:38 हो चुके हैं और आज की तारीख 19 मई, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज का जो डे है वो भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे। यानी कि हर घर में एक डॉक्टर जरूर होते हैं। आप सोच रहे हो कि डॉक्टर रियली? बिल्कुल होते हैं हमारे। देखिए डॉक्टर तो होते ही होते हैं, साथ में हमारे जो मम्मी होती है, पापा होते हैं, नानी होती है, दादियाँ होती है, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है भैया। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो कैसे वो अपने नुस्खे ऐसे अपनाती है कि छू मंतर हमें हम ठीक भी हो जाते हैं। तो इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यानी कि अब जरा सोचिए, घर में जब किसी को बुखार होता है, बच्चे को सर्दी लगती है या किसी बुजुर्ग को अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो सबसे पहले हमें किसी की याद आती है, यानी कि हमारे फैमिली डॉक्टर, जो कि मम्मी बहुत ख्याल रखती है। और वही डॉक्टर जो सिर्फ दवाई नहीं देते बल्कि हमारे पूरे परिवार का ख्याल भी रखते हैं, हमारी छोटी छोटी परेशानियों को भी समझते हैं और हमें सही सलाह भी देते हैं। और इस डे की शुरुआत यानी कि 2010 में की गई थी, ताकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई थी कि अगर आपको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले घर के नुस्खे अपनाए जाते हैं। जो मम्मी होती है, जब भी सर में दर्द होता है तो आपको एक तो बाम लगा देंगी कि बाम लगा लो, सर दर्द अभी चुटकियों में ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको फीवर है तो वो कुछ काढ़ा ऐसे बनाती है, तुलसी लौंग वगैरह डाल के, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो अपने अपने डॉक्टर्स को, मम्मी को, फैमिली वालों को ज़रूर थैंक यू बोले आज के दिन, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल वही रखते हैं, क्योंकि सच में कई बार हमारे घर से दूर होकर भी वही हमारे परिवार की सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और यूं ही हमारा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि अगला गाना भी ना सच बताओ बहुत प्यारा है। आप सुनेंगे ना तो सच में बोलेंगे कि हाँ यार, यानी कि फैमिली होती बहुत प्यारी है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 5:50 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं जरा वेदर के बारे में, क्योंकि भैया देखिए गर्मी सा भी ये बताया जा रहा है कि 7 दिन तक तो आपको यानी कि गर्मी की अलर्ट दी गई है। यानी कि टेम्परेचर की बात करूँ तो 45-47 तक भी कहा जा रहा है कि बढ़ने वाली है टेम्परेचर। सो आपने कुछ नहीं करना है, बस बच के रहना है। सबसे पहली बात, जितना हो सके पानी ज़्यादा पीते रहे, क्योंकि शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो टोपी, छाता या दुपट्टा ज़रूर रखें अपने साथ, फेस पर ज़रूर कवर करके रखें ताकि सीधी धूप आपको छू ना सके, यानी कि आप बच सके थोड़ा सा। क्योंकि जब भी आप बाहर, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आई थी बाहर से, भाई सच बताऊँ जो काम करते हैं उनके लिए तो सराहनीय, यानी कि

मतलब तारीफ की तारीफ के ऊपर, उनकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है कि इतनी धूप में वो कैसे काम कर लेते हैं। हम यानी कि बस थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई थी गाइस, ऐसा लग रहा था कि भाई जो भी काम है छोड़ और अपने रूम पर चले जाओ, इतनी ज्यादा गर्मी है। और कोशिश करिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में आप बाहर ना निकले। अगर ज्यादा काम पड़ रही है तब आप छाता लेकर जाइए, दुपट्टा अपने साथ रखिए, तभी आप बाहर जाइए। और इस गर्मी में ना आपको फल, दही, छाछ या नींबू पानी जरूर पीजिए, क्योंकि ये चीजें आप पीते हैं तो आपको गर्मी से राहत मिलती है। और जो बाहर की जंक फूड है जितना हो सके उतना आप अवॉइड करिए, तभी आप ठीक रह पाएंगे। अदरवाइज ये गर्मी बढ़ती जा रही है, कभी सर में दर्द, कभी चक्कर आना, इस तरीके से लगा ही रहेगा। तो आप चाह रहे कि भाई हम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, तो आपने इतना तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने के साथ साथ जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है उनका ध्यान रखना इस टाइम बहुत जरूरी है। और बस यही है कि घर से बाहर जाते समय चीजों का आपने ध्यान रखना है, दुपट्टा लेकर जाना है। और आरजे रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रही FM मुरादाबाद 89.6। चलिए जी, बहुत प्यारा गाना आप सभी के बीच, सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते जी।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल यानी कि अब इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। टेम्परेचर में बात करूं तो 39 डिग्री सेल्सियस है और इस गर्मी में आपने कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है। सो आज हमारे साथ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर के इंटरव्यू चलाने वाले हैं। सो उसको आप जरूर सुनिए और उसको फॉलो भी करिए।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन, जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये एपिसोड है फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है, आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
6: अच्छे हैं
5: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसे लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
6: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
5: जी
6: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
5: रेडियो के माध्यम से
6: पहुँचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
5: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
6: देखिए, ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
5: जी,
6: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है, उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसटीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्य योजना बना के उस पर काम करते हैं।
5: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं, इसी में एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
6: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
5: अच्छा, ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना एकदम से, ये आपदाई होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
6: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
5: जी,
6: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती हैं। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर्स फेज बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है। उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना, जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हम हैं यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती हैं शॉर्ट सर्किट से होती हैं, शॉर्ट सर्किट से, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई। तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही। तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं
5: जी।
6: तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
5: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
6: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
5: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
6: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहां पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है
5: जी,
6: और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
6: जी।
5: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वहीं जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
6: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
5: करेक्ट।
6: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर लें एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारें, एक दो बार उनको नहलाते रहें और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहां पे आप संपर्क करके उनको वहां पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
5: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती हैं तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
6: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
5: जी

0: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
0: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा है संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है या और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ?
0: देखिये, मैंने जागरूकता के स्तर पर तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पर अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी, तो पानी के आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी शेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला, बहुत बड़ा चौराहा, हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई शेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है, और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता है कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो इसके में आपका क्या कहना है?
0: देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है,
1: बिल्कुल,
0: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें, फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की, आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉकड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें, सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारी दी।
0: और मैं दूसरी बात जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो 2-3 चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉड्यूल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं, और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए, और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगे हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है,
1: करेक्ट।
0: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती है एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफटॉप हम लोग बोलते हैं, कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं, और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
1: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और सबसे अच्छी बात आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
0: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टेडियम।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 6:26 हो चुके हैं। और अब देखिए, हर चीज महंगी होती जा रही है, दूध से लेकर ब्रेड तक पेट्रोल।

इस वॉल्ट का हमें झटका लग जाता है, लेकिन अब हालत ये है कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी से ज़्यादा दिल का मीटर तेज चलने लग जाता है गाइस। और जब दुकानदार बोलता है, भैया ब्रेड का रेट भी बढ़ चुका है, दूध भी महंगा हो गया है, तो लगता है जैसे जेब और बजट दोनों इंतहाम चल रहा हो, यानी कि इंतहाम की घड़ी चल रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक बात तो अच्छी है कि हम भारतीय लोग हर सिचुएशन में मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो बजट हो, खर्चा हो ज़्यादा, फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है, ज़िंदगी की गाड़ी कभी रुकने वाली तो है नहीं, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, बस चीज़ों को थोड़ा कम कर देते हैं। और वहीं ब्रेड, दूध और पेट्रोल के दाम को कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग रहे हैं भैया, बस इसीलिए परेशान मत होइए और इस महंगाई में भी मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को यूं ही एंजॉय करते रहिए। और आरजे रीना के साथ यूं ही रेडियो सुनते रहिए, अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। चलिए देखिए, कड़क सवाल भी हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे, बस आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए। इस गर्मी में अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस बढ़ती गर्मी में अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सो चलिए अगले मैसेज गाने की तरफ बढ़ते हैं, अगला गाना।

0: अशांतिन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ। और अब लेकर आ गई हूँ मैं कड़क सवाल। यानी कि कड़क सवाल क्या होने वाला है, आपको मैं एक वॉइस यानी कि सुनाने वाली हूँ, आपने उसको सुनना है और बताना है, एक्टर का नाम बताना है आपने कि किस एक्टर की आवाज़ इतनी मधुर, इतनी प्यारी। और ये जो डायलॉग है ना, बहुत वायरल हुआ है, बहुत वायरल। अगर आपने ये मूवी देखी है तो ज़रूर आप बता पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, सुना आपने ये वॉइस। हाँ जी, सोचिए और फटाफट बताइए कि ये जो वॉइस है, ए फगुनिया, हम तुमको कितना चाहते, कितना चाहते, क्या बताए, सीना चीर कर दिखाए। ये जो आपने वॉइस अभी सुना है, इस एक्टर का नाम बताए ना आपने, हम कहाँ बताना है जी आपको। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना राइट आंसर के साथ। फिलहाल अलग अलग

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 6:39 हो चुके हैं और आप अर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। अगर आप हैं मैच देखने के दीवाने तो आज का मैच भी बड़ा ही लाजवाब है गाइस, यानी कि लखनऊ वर्सेस राजस्थान के बीच यानी कि मैच होने वाला है। सो देखना ये है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी होने वाला है। और भाई ये जो दोनों टीम है ना, जबरदस्त वाले हैं, यानी कि वैभव सूर्यवंशी का जो जो बैट घूमता है ना भाई साहब, तो उस लड़के की मतलब वो चाहता ही नहीं है कि बस मैं एक भी रन लूँ, बस छक्के चौके के चक्कर में रहता है भाई वो लड़का। और जब वो छक्के चौके इतने मारने के बाद भी अगर आउट हो जाता है ना, तो वो निराश हो जाता है कि यार सिट, मुझे आउट होना ही नहीं चाहिए था। सो आज का जो मैच है वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो मैच देखना बिल्कुल ना भूले। और आज का कड़क सवाल जो मैंने आप सभी से पूछा है, यानी कि आपको एक डायलॉग सुनाया जाएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उस एक्टर का नाम बताना है। तो चलिए सुनते हैं गाइस।
1: मार जान है रे जान, ए फगुनिया, तो मार जान है रे जान, तोर को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं का बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा, ए फगुनिया, तो मार जान है रे जान, तोर को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं का बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा।
0: एंड जी फटाफट सोचिए और बताइए कि ये वॉइस आपने जो सुना है वो किस एक्टर की आवाज़ है। और हमारा म्यूजिकल नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके बताइए। फिलहाल अगला गाना

0: यार बारिश की घंटी होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
2: श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है, अर्जेरीना के साथ कनेक्ट हैं आप। और समय की बात करूँ तो 6:48 हो चुके हैं और अब आप सभी के मैसेज की बारी है। लेकिन मैसेज से पहले आज का जो कड़क सवाल, यानी कि जो आप सभी को एक डायलॉग सुनाया गया था, बस आपने उस एक्टर का नाम बताना है। सो चलिए एक बार और आपको हम सुनवाते हैं।
4: जान है रे जान, ए फगुनिया, जान है रे जान, इतना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना चाहते हैं कितना च
3: और साथ ही साथ इनका आज हैप्पी वाला बर्थडे भी है। अब आप समझ गए होंगे कि आज किस बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे मनाया जाता है। सो अगर आपको पता चल गया हो गाइज तो फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896, क्योंकि अब बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की है। तो बस बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। फिलहाल अगले गाने को एंजॉय करें, गाने के बाद लौट कर आते हैं।

क्या बात है जी। हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। चलिए फाइनली आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि इनका हमारे पास क्या मैसेज आता है, और उसके बाद फिर आपको भी पता है कि रीना लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं और इनके दोस्त है सैयद सारिक अली। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसी हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, साथ ही साथ अभी महंगाई बढ़ रही है इसके बारे में जो आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करें तो हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ जी गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अपना ध्यान रखिए। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी मुरादाबाद से। एंड अभी गर्मी देखिए बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी अभी बहुत हाई है, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस है। तो अपना ध्यान रखिए, पानी की बोतल अपने साथ रखिए, क्योंकि पानी की बोतल अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है यानी कि दीपक जी कनेक्ट होते हैं एमडीए मुरादाबाद से, और इनके कहने के शो मस्त है और गाने भी बहुत अच्छे चलाए आपने, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करूँ, अगला मैसेज यानी कि वंशिका जी कनेक्ट होती है हमारे साथ बुद्धि बिहार से, और इनके कहने के जो आपने ये म्यूजिक प्ले किया यानी कि जो अभी डायलॉग प्ले किया है, वो एक्टर का नाम है यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और आज इनका बर्थडे भी है, क्या बात है। और ये कहती है कि मुजफ्फरनगर के थे ये, ओके। तो अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, एक्टर का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन सर आपका ही नाम नहीं पता है मुझे, आपने अपना नाम नहीं बताया सर, इनके नंबर के 4 डिजिट है यानी कि लास्ट के 1001। तो सर आपका यानी कि इनका पहले मैसेज आया था मेरे पास, तो ये बनते हैं आज हरियाणवी तड़का शो के विनर। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं क्योंकि आज की तारीख 19 मई को नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ था, यानी कि ये मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने बॉलीवुड में जब अपना कदम रखा तो बहुत सी मूवी इनकी फ्लॉप गई, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने बस सोच लिया था जब एक कदम आगे बढ़ चुका है तो मैं फिर इस कदम को पीछे कभी नहीं हटाने वाला हूँ, चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। क्योंकि देखिए श्रोताओं, कोई भी काम आप शुरू में करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको कामयाबी मिल जाए, बहुत रेयर होता है कि आपको एकदम कामयाबी मिल जाए, और वो भी बॉलीवुड में, तो बहुत मुश्किल होता है। आप बॉलीवुड में जा रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, और तब जाकर इनको, इन्होंने जब हार नहीं मानी, बार बार मूवी में काम करते रहे, तो तब जाकर इनकी मूवी जब अच्छी आने लगी, यानी कि जब ब्लॉकबस्टर पर ये छाने लगे। और साथ ही साथ अगर अब की बात करूँ तो भाई हर किसी के दिल में ये राज करते हैं, और जो इनका डायलॉग है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, ए फगुनिया हम तुमको इतना चाहते इतना चाहते इतना चाहते कि कहाँ बताएं, ये तो बहुत पॉपुलर हुआ था। और इसी के साथ रीना लेती यहाँ से जाने की इजाज़त, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, और आप सभी के बीच एक एपिसोड भी हम प्ले करने वाले हैं जो कि रामपुर की बिटिया के बारे में है, यानी कि यूपी की बिटिया है, उसके बारे में बात करने वो एपिसोड चलाने वाले हैं। सो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: रामपुर की विद्युत सखी सविता देवी, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। श्रोताओं, यही ममता और संरक्षण की भावना आज उत्तर प्रदेश की नीतियों योजनाओं में भी देखने को मिलती है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास के साथ साथ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक ऐसा प्रदेश जहां बेटियां अब सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बन रही हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं बल्कि एक मजबूत आधार स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य की नींव गढ़ रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें कम ब्याज पर ऋणी कौशल विकास और आजीविका के अवसर को प्रदान करना है ताकि उनकी आय बढ़ सके और वे गरीबी से बाहर आ सकें। ये मिशन उद्यम परीक्षण और ऋणी सहायता के माध्यम से गरीबी कम करने का कार्य करता है। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन, हर जगह पर यह बदलाव अचानक नहीं आया, संभव हुआ है सही नीति, मजबूत नेतृत्व और समाज की बदलती सोच के कारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हर बेटी को मिले सुरक्षा, हर बेटी को मिले शिक्षा और हर बेटी को मिले आगे बढ़ने का अवसर। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की सोच और व्यवस्था को भी बदल दिया। आज की कहानी है रामपुर जिले की। एक साधारण गृहिणी से विद्युत सखी बनने तक का सफर तय करने वाली सविता देवी जी की। कहते हैं ना दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। नमस्कार, मेरा नाम सविता देवी है। मेरी जिंदगी भी कुछ इसी तरह एक साधारण ग्रामीण महिला, घर की जिम्मेदारी में उलझी हुई और खुद की कोई पहचान नहीं। पहले हमारा जीवन बहुत सीमित था, घर का काम, परिवार, बस यही दुनिया थी। कभी नहीं सोचा था कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, हर कहानी में एक मोड़ आता है और सविता जी की जिंदगी में ये मोड़ आया साल 2018 में, जब उन्होंने रानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का यही उद्देश्य है कि गांव की महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह ने लाखों महिलाओं को नई दिशा दी और सविता देवी भी इस बदलाव की एक मजबूत कड़ी बन गई। समूह से जुड़ने के बाद हमें समझ आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ट्रेनिंग में हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिला और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो श्रोताओं, यही आत्मविश्वास आगे चलकर सविता जी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक साल बाद उन्हें ब्लॉक स्तर पर विद्युत सखी के बारे में जानकारी मिली

0: और फिर आया वो पल जिसने सविता जी की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। साल 2021 में उनका चयन विद्युत सखी के रूप में हो गया। जब हमें चुना गया तो खुशी भी थी और डर भी, कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। डर होना स्वाभाविक था, लेकिन सविता जी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने परीक्षण लिया और फिर शुरू किया एक ऐसा काम जो पहले गांव में लगभग नामुमकिन माना जाता था। गांव में अक्सर देखा जाता है लोग बिजली के बिल समय पर जमा नहीं करते, लाइन में लगना, दूर जाना, ये सब बड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन सविता जी ने इस समस्या का समाधान बनकर दिखाया। हम घर घर जाते, मोबाइल से बिल चेक करते और वहीं पर मशीन से रसीद निकाल कर देते। अरे वाह, यही है असली बदलाव, जहां एक महिला तकनीक को अपनाकर पूरे गांव को डिजिटल बना रही है। उत्तर प्रदेश की डिजिटल पहल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव में टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। अब बात करते हैं सविता जी की मेहनत के आंकड़ों की। हर दिन 80 से 100 लोगों के बिल जमा करना, OTS योजना के दौरान, रोज 2 से 5 लाख रुपए तक का कलेक्शन और जनवरी 2026 में पूरे 85 लाख रुपए का कलेक्शन। कभी कभी तो हमें खुद विश्वास नहीं होता कि हम इतना काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, दिसंबर के महीने में तो सविता जी ने 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिखाया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मेहनत है, विश्वास है और समर्पण की कहानी है। लेकिन श्रोताओं, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की लंबी कहानी होती है। सविता जी के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में भरोसा नहीं करते थे, कहते थे कि पैसा लेकर भाग जाएगी, बहुत बुरा लगता था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यही तो असली आत्मविश्वास है। जब लोग आप पर शक करें और आप अपने काम से जवाब दें। सविता जी ने हर बिल का भुगतान समय पर किया, रसीद दी और लोगों का भरोसा जीत लिया। आज हालात ये हैं कि लोग खुद सविता जी को बुलवाते हैं और कहते हैं हमारा बिल भी जमा कर दीजिएगा। जब लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और सिर्फ भरोसा ही नहीं दोस्तों, सविता जी ने तकनीकी चुनौतियों को भी मात दी। नेटवर्क की दिक्कत होती थी तो हमने 2 सिम रखना शुरू किया ताकि काम कभी नहीं रुके। यही है समाधान सोच, यही है नई सोच का उत्तर प्रदेश। आज सविता देवी हर महीने 70 से 80 हजार रुपए कमा रही हैं, अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही हैं और सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आज महिलाओं को समाज का मार्गदर्शन भी बना रही हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, परिवार का साथ लीजिए और आगे बढ़िए। श्रोताओं, ये थी सविता देवी जी की कहानी, एक ऐसी महिला जिसने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। आप भी अपने सपनों को पहचानिए, उन्हें पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाइए। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी अब आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं विपुल अग्रवाल हूँ मुरादाबाद से, और आज यहाँ मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर आने का मौका मिला। कुछ गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपनी आवाज में आपको मुझे लगता है पसंद आएंगी। तो लीजिए सुनिए गजल जगजीत सिंह की विपुल अग्रवाल की आवाज में। हर

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
5: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
6: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
5: अरे वाह।
6: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
5: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
8: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
7: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपए से लेकर 92.21 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
9: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
7: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
3: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
7: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
10: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों

0: उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
1: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बरातघर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो नमस्ते आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं

0: आपको एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
1: मैं डॉक्टर मोनित अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय BMC हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं BMC हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशंस में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
1: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
1: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
0: अच्छा, सर इसका कोई विशेष कारण?
1: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
0: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और इस पर हम,
1: बहुत बड़ी संख्या है और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप समझते कि पूरा हमारा शरीर जो है, वो हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
0: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, बस ऐसी हमारी कोशिश है और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
1: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्दल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
0: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
1: जैसे मैंने बताया, मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
0: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे?
1: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टियाँ आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मुंह का टेढ़ा होना है। इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर से भी देखते हैं और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
0: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लक्षण तो आपने बताए। हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
1: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
0: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है?
1: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचे हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं?
1: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और ये चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
1: मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखा कुछ काम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है। और आप समझिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, जब 28,000 लोग साल के इससे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतने जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: बाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हवाई परियोजना का हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी में जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राजमार्ग निर्माण में लाखों टन शहरी कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी का भी धन्यवाद दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
1: केंद्र की डबल इंजन सरकार ने मिलकर के जो एग्जाम्पल सेट करना होता है, दिल्ली आज उसका सर्वोच्च फायदा उठा रही है। और मैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए लाखों टन हमारा जो वेस्ट था वो आपने इन सड़कों के इन हाईवेज के बनाने में उसका इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे दिल्ली शहर को हुआ। इस पूरे फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिल्ली बहुत सुंदर बनने वाली है।
0: श्री गडकरी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी।
2: नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा।
0: राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित बनाने की दिशा में अग्रसर दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र शुरू करने जा रही है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिक अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और साथ ही नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। इसमें लोगों से यह पूछा गया है कि संग्रह केंद्र कहाँ बनाए जाने चाहिए तथा इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
4: वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं, कभी पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूं इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सके, बाद में जिन्हें रिसाइकिल करके फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए।
3: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मिशन अब केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत को आकार दे रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। श्री सूद ने कहा कि बैठक में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत की बढ़ते व्यापार व्यवस्था को समर्थन देने, संपर्क को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और निर्बाध आवाजाही मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में परिधान, निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष प्रेमल उदानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र कौशल विकास के उपायों को मजबूत करना, कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना और उद्योग की क्षमता के उपयोग में सुधार लाना था। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और श्रमिकों को सहायता देने वाले तंत्र के लिए सहयोगात्मक मॉडलों पर भी विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी करके नागरिक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी की दो

0: द्वारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कोर्ट की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कोर्ट ने वर्तमान और भविष्य के शैक्षणिक महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उभरते क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों की सराहना की। इसके साथ ही श्री संधू ने विश्वविद्यालय को एक ऐसा स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की सलाह दी जो व्यवहारिक, वित्तीय रूप से सक्षम और लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। उपराज्यपाल ने संस्थान से ये भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की गंभीर चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा संक्रमण, सीवेज प्रबंधन और यातायात जाम के लिए विशिष्ट और किफायती समाधान विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को तेज करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उपराज्यपाल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें औद्योगिक विकास, व्यापार संवर्धन, द्वारका में निवेश के अवसर और दिल्ली में कारोबार करने की सुगमता को मजबूत करने के उपाय शामिल रहे। श्री संधू ने आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के संबंध में श्री गोयल के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एरो सिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 4 परिसर का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार नई तकनीकों और हरित अवसंरचना मॉडल को समझने तथा अपनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परिसर में हाई इफिशियंसी डिजाइन और कार्बन ऑफसेट्स के जरिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है जहां प्रदूषण कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सरकार और दिल्ली परिवहन निगम की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ मुफ्त यात्रा की एक सुविधा ही नहीं है बल्कि ये महिलाओं को एक गरिमापूर्ण, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी भर में आवासीय कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं के लिए इन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना ने महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है और उन्हें सार्वजनिक बस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे यात्रा का माहौल ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन गया है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवलीन निगम।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया है। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि आयुष ग्रिड सरकार की दूरदर्शी डिजिटल पहल है। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम मुख्यालय से 8 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया। श्री वाही ने कहा कि इन मशीनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के अंतर्गत खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनें राजधानी की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 मंत्रालयों के सचिवों, महारजिस्ट्रार कार्यालय, जनगणना आयुक्त और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी दूसरा परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: आयोग ने कहा है कि सितंबर 2023 में जारी पहले परामर्श पर संबंधित अधिकारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आयोग ने लगातार प्रयासों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान की है। आयोग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित परामर्श जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में जेंडर आधारित विविधता को शामिल करना, जेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने संबंधी कानूनों की समीक्षा, समावेशी कानूनी ढांचा तैयार करना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यस्थल पर समावेशिता शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारतीय रेलवे ने विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में पहले 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस क्रम में शेड द्वारा सबसे तेज 100वां लोको कवच, 200वां लोको कवच और 300वां लोको कवच को पूरा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने आज एक बैठक के दौरान कार्रवाइयों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 दिनों में 125 निरीक्षण किए गए। राजधानी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त, वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 years।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सर, समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
1: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट,
1: कंगारू मदर केयर।

0: मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके।
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
1: जी, जी।
0: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है वो
1: होता
0: क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्प कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाना, उसको अच्छे से बर्प करा के तभी लेटाना।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है,
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है, मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म से जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर
1: जी,
0: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीन, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें, जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
1: जी जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेलियां तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें,
1: बिल्कुल,
0: और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
4: कॉल 8826213131।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
9: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है, और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन, और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों, तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
10: थैंक यू आनंद। सच कहूं तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
11: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते
12: हैं। रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम होती जा रही है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है, लेकिन उसका जो मजा था

0: वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूँ आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था, उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
1: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट। और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
1: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए, सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
1: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट।
1: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के टाइम, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया
1: में बिजी है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उससे पूछा भी, क्या प्रॉब्लम है बेटा, आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या आज आप उदास क्यों हैं?
0: सही कहा आपने।
2: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं, दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
1: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है, तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
3: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
1: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
3: बिल्कुल,
1: अब बातें ज्यादा होती हैं,
3: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों, ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
4: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच। छह यार।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा
0: और
1: रूम पे पहले बेटा हम तुम्हारा रूम में मतलब मैं भी
0: आप रेस्ट करो,
1: आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे,
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट लाइट
1: आ गई है। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती थी, अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट, पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब हो ना कि हम समय पर सोए समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं, पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते थे
0: एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है, और सबसे जरूरी बात हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
2: बिल्कुल
0: अगर आप घर पे हो परिवार के साथ हो रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल ChatGPT जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरीथिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए, आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल ये दूध लेने भी नहीं जाते क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के ये है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख ले यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
2: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही,
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है
0: करे,
1: लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आठ ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है, ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है,
2: बिल्कुल
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या निगेटिव चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है इसमें, निगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शहर जाते जाते। रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना
2: सुविधा
1: चाहिए।
2: के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारे पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं, पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसकी आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दिए तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
1: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है उसको।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय,
4: सबसे
3: ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
1: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए जहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं अब हम लेते हैं से जाने की विदा।
0: बिल्कुल इजाजत लेंगे लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं। परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए और फैमिली से भी कहना चाहता हूं, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वर्किंग वुमेन है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है, तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी। हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते रहो,
3: गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है। तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है। और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टानें और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गाय और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: चतुर एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना,
1: एक चतुर ना।

0: नहीं सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है, और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन, और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
4: थैंक यू आनंद। सच कहूं तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
5: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
6: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
3: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा
2: रीना, बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदी हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना,

0: सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी, आपको क्या लगता है?
1: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है,
0: करेक्ट,
1: किसके मन में क्या बात। आजकल लोग, आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के टाइम, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी
1: दुनिया में बिजी है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है।
0: सही कहा आपने।
2: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं, दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
1: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है, तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
3: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
1: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे,
3: बिल्कुल,
1: अब बातें ज्यादा होती हैं,
3: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों, ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
4: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235 मैक्स टच, छह यार जिस

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो। और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी। और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था। अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा
0: और
1: रूम पे पहले बेटा हम तुम्हारा रूम में मतलब मैं भी आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ। क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था।
1: हाँ
2: अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे?
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग लेट नाइट।
1: पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती
0: हैं।
1: अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब होना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है।
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते
0: थे। एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो।
2: बिल्कुल,
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरी थिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए। आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाएं तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी जी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा व्यू हम देख ले, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
2: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही।
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आज ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट कर लिया वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों, हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
2: बिल्कुल,
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शहर जाते जाते। रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना
2: सुविधा
1: चाहिए।
2: के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारे पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं, पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसकी आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दिए तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे, बच्चे अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया तो भैया तो समझो बेड़ा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय,
4: सबसे
3: ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं जाने की विदा।
0: बिल्कुल इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, आप लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए FM मुरादा।

0: बाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनते रहिए। है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
4: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
3: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
4: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची कैसे हो आप?
6: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
5: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
6: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
5: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
6: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कन्फ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
5: मुरादाबाद के दोस्तों याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
6: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
5: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
6: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
5: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
6: अच्छा।
5: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और कई चीजों पे, जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है, सुबह सुबह यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
6: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
5: बिल्कुल सही कह रही हैं प्राची जी। चलिए हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी, वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे FM मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का

0: मतलब है फर्स्ट स्टैम्प इन लर्निंग।
1: लाइफ में गिरना अलाउड है मगर रुकना अलाउड नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
1: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
0: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रही हूँ प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना आप ही वहाँ रुक जाती है।
0: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप हैं प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो जल्दी लिखा।

0: तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: तो श्रोताओं हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
0: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
1: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
0: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
2: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
1: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
2: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।